मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ होती है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

0: ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1,000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान एनएमबीए के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और एनएमबीए पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 में हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

भक्ति संगीत के श्रद्धा रूपी पुष्प सबसे पहले अर्पित करते हैं उस ईश्वर के चरण कमलों में जो अन्नदाता है, पालनहार है, जिसको हम इस दुनिया की रौनक में, चमक में, मोह में खो बैठे हैं, भूल बैठे हैं। प्रभु का ध्यान लगाने से, उसका नाम जपने से और दिन का शुभ आरंभ उसके नाम से करने से जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। फिर ऐ मानव, क्यों अपने ईश्वर को याद नहीं करता?

हे गणपति मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य, आपकी जय जयकार गलियों गलियों गूंजती है। आप की कृपा भक्तों पर यूं ही बनी रहे और आपकी भक्ति में सुख समृद्धि की प्राप्ति मिले।

हे गुरु, आपकी महिमा अपरंपार है। हमें आपकी दया दृष्टि चाहिए। थोड़ी जगह आपके चरण में मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। हमारी अरदास सुनिए और हमारा कल्याण कीजिए। हम अपनी विनती आपके समक्ष रखते हैं।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अंत में जय जयकार करते हैं भगवान गोविंद गोपाल की।

भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना में जिन कलाकारों को अभी आप सुन रहे थे उनमें शामिल थे अनूप जलोटा, बेला सुलाखे, सरदार हसन मौलाई, आशा भोसले और अनुराधा पौडवाल। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: लोगों को कहते सुना जाता है कि सुख दुख का जोड़ा है। तत्वदर्शी संत महात्मा भी कहते हैं कि सुख दुख पाप पुण्य आदि विरोधी तत्वों से मिलकर ये सृष्टि बनी है। संस्कृत की एक सूक्ति के अनुसार जिस तरह घूमते हुए पहिए के अरे ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख भी बारी बारी से आते रहते हैं। तो एक दूसरी सूक्ति कहती है, सुखम ही दुखानी अनुभूय शोभते। दुखों का अनुभव करने के बाद आने वाले सुखों की विशेष शोभा होती है। इसी बात को हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद ने इस प्रकार कहा है कि दुख की रात बीत जाने पर ही सुख का विमल प्रभात विलसित होता है। उनके अनुसार यही दुख सुख विकास का सत्य है, अर्थात सुख दुख के परस्पर विरोधी घात प्रतिघातों से ही मानवता का विकास हुआ है। इसलिए सुख दुख का यह द्वंद्व मनुष्य के लिए ईश्वर का एक वरदान ही है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि संसार में दुख ही दुख है, सुख यदि है तो बहुत थोड़ा। कविवर सुमित्रानंदन पंत के अनुसार किसी को आज यदि सोने के सुख साज मिल भी गए तो वह कल ही दुख उन्हें ब्याज सहित चुका लेता है। काल देवता बड़े निर्मम हैं। बहुत पहले भगवान बुद्ध ने भी दुख को एक आर्य सत्य के रूप में अनुभव किया था। उनका अंदेशा था कि संसार में दुख ही सत्य है। दुख का कारण हमारे जन्म मरण का ये चक्र है और इस चक्र का कारण हमारी इच्छाएं हैं। अतः इच्छाओं को समाप्त कर निर्वाण प्राप्त करना ही दुख मुक्ति का एकमात्र उपाय है। बुद्ध का प्रभाव अन्य परवर्ती दर्शनों पर भी पड़ा और जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ माने जाने लगा। किंतु आधुनिक काल में इस निवृत्ति परक जीवन दर्शन का विरोध भी हुआ। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी व्यंग्यात्मक शैली में लिखा, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। संसार में त्रिविध दुख दिखाई पड़ने लगे, उन्हें मिटाने के लिए उपाय भी किए जाने लगे। किसी न किसी तरह कोई उपाय मिलता गया। कछुओं ने सोचा, चोर को क्या मारें, चोर की मां को ही न मारें, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। लगी प्रार्थनाएं होने, मां दे ही राम जननी जठरे निवासम, अर्थात हे राम मुझे अगली बार माता के गर्भ में निवास मत देना। और ये उस देश में हुआ जहां सूर्य का उदय होना इतना मनोहर था कि ऋषियों का ये कहते कहते तालु सूखता था कि 100 बरस इसे हम उगता देखें, 100 बरस सुने, 100 बरस बढ़ बढ़ कर बोलें, 100 बरस अधीन होकर रहें। कुछ भी कहें, दुख तो आते हैं, उनसे हताश होकर हम टूट न जाएं, इसके लिए कोई न कोई उपाय तो होना ही चाहिए। इसके लिए महाभारत में अनासक्ति योग का दर्शन विकसित हुआ। महाभारत युद्ध के महान विनाश से युधिष्ठिर जब बहुत दुखी हुए तो व्यास ने उन्हें इस प्रकार समझाया, शोक के सहस्रों स्थान हैं, हर्ष के भी सैकड़ों अवसर हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ मनुष्य पर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वान पर नहीं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। कोई भी न तो सदा दुख पाता है न निरंतर सुख ही प्राप्त करता है। सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जब जो प्राप्त है उसे अपराजित हृदय से सहन करना चाहिए। 100 बात की एक बात है, न सुख से पराजित हो और न दुख से पराजित हो, दोनों में से किसी को अपने मन पर हावी न होने दें। कृष्ण ने भी अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाते हुए कहा था कि जो दुख में अनुद्विग्न और सुख में निष्प्रिय रहता है उसी की बुद्धि स्थिर कही जाती है। ये दर्शन मानो भारत की मिट्टी में रच बस गया है। यहाँ का बेपढ़ा आदमी भी दुख पड़ने पर देह धरे को दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान सो मूर्ख काटे रोए, कहकर स्वयं को या दूसरों को दिलासा देते देखा जाता है। जन कवि नजीर अकबराबादी ने इस सत्य को इस प्रकार वाणी दी है, आकिल जो था वो खुद को समझा के मर गया, बेअक्ल छाती पीट कर घबरा के मर गया। मरते सभी हैं, अक्लमंद भी और बेअक्ल भी, किंतु अक्लमंद धैर्य धारण करके शांत चित्त होकर मरता है, बेअक्ल रो कलप कर मरता है।
0: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विषय पर जानकारी। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
2: स्वास्थ्य संदेश के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जीव जंतु के शरीर में जन्म से ही विद्यमान रोगों से लड़ने वाली सामान्य व्याधि क्षमता को नैसर्गिक व्याधि क्षमता यानी नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। उचित आहार विहार के पालन से यह क्षमता बढ़ती है या बनी रहती है तथा अनुचित आहार विहार करने से यह घटती है या नष्ट होती है। व्यक्ति के आहार विहार, रहन सहन और पथ्य अपथ्य पालन के आधार पर यह व्याधि क्षमता अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए कुछ व्यक्ति तो उत्तम व्याधि क्षमता वाले होते हैं तो कुछ व्यक्ति क्षीण व्याधि क्षमता वाले होते हैं। व्याधि क्षमता जब बलवान होती है तब शरीर प्रायः निरोग रहता है और यदि रोग हो जाए तो जल्दी ही ठीक हो जाता है, और इस कारण ऐसे लोगों की आयु दीर्घ हुआ करती है। इसके विपरीत जिनमें व्याधि क्षमता दुर्बल या नगण्य होती है उनका शरीर बार बार रोगग्रस्त होता रहता है और रोग जल्दी ठीक भी नहीं होता। व्याधि क्षमता के कुछ प्रकार होते हैं। कुछ संक्रामक रोगों के होने पर शरीर में उन रोगों के प्रति उत्पन्न होने वाली व्याधि क्षमता को उपार्जित व्याधि क्षमता यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यह कुछ में अल्पकालिक, कुछ में दीर्घकालिक और कुछ में आजीवन रहती है। वैक्सीनेशन द्वारा विशिष्ट व्याधि क्षमता उत्पन्न की जाती है, उसे कृत्रिम व्याधि क्षमता यानी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन कई बार हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के स्वस्थ ऊतकों और बाहरी तत्वों यानी एंटीजन के बीच भेद नहीं कर पाती है और कई बार शरीर के स्वस्थ ऊतकों को हानि पहुंचाने लगती है। ऐसे में व्यक्ति स्वस्थ नहीं महसूस करता है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटीन, बायोकेमिकल्स और कोशिकाओं से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर को बाहरी बैक्टीरिया तथा वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी इस सिस्टम से भी गलती हो जाती है और यह शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को ही नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे रिमेटाइड अर्थराइटिस, ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। शोध के मुताबिक कुल जनसंख्या का 1% हिस्सा ऑटो इम्यून बीमारियों की चपेट में है, जबकि 10 में से 9 महिलाएं और 1 पुरुष ऑटो इम्यून

0: उन रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। यानी इस रोग में सबसे ज्यादा महिलाएं ही ग्रस्त हैं। जोड़ों के दर्द, लंबे समय तक बुखार रहना, रक्तस्राव, रुक न रहा हो और ये लक्षण युवा उम्र की महिलाओं में हो तो ऑटो इम्यून डिजीज होने की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है समय पर सही इलाज और जीवन शैली में संतुलित बदलाव। ऐसे मरीजों को खाने में वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। खमीर युक्त भोजन जैसे डोसा, जलेबी, दही आदि से परहेज करना चाहिए। खट्टी व ठंडी चीज़ों से भी परहेज करें। वैसे किसी पदार्थ का सेवन न करें जो सुपाच्य न हो। लहसुन, जीरा, हल्दी, धनिया, अदरक, मूंग दाल और सौंठ का प्रयोग जरूर करें। खान पान के अलावा दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर ऑटो इम्यूनिटी की बीमारियों, खास रूप से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। जैसे ठंडे पानी से स्नान करने से परहेज करें, क्योंकि इससे रक्त संचार प्रभावित होता है। हमेशा गुनगुना पानी से स्नान करें या स्टीम बाथ लें। दिन में नींद न लें, इससे मांसपेशियां कड़ी होती हैं और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। रात में सोने से पहले गर्म पानी से हाथ पैरों को धोएं या सेंकें, इससे रक्त संचार बढ़ता है। नीम और अरंडी के पत्तों से भी जोड़ों की सिकाई कर सकती हैं। दिन भर के तनाव से मुक्त और क्षतिग्रस्त मांसपेशियों को दुरुस्त करने के लिए नियमित और भरपूर नींद जरूर लें। अनावश्यक तनाव से बचें। ऑफिस या घर के काम के दौरान ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हों तो थोड़ी देर के लिए पैदल टहलने निकल जाएं या ध्यान करें, कोई मनपसंद किताब पढ़ें या संगीत सुनें। इससे आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर घटेगा जो कि शरीर में सूजन पैदा करते हैं। इस तरह जीवन शैली में बदलाव लाकर आप अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जानकारी बस यहीं तक। नमस्कार।
1: स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रोग प्रतिरोधक क्षमता विषय पर जानकारी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए एक नज़र डालते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष और दूसरी सभा के प्रमुख कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:45 पर रोजाना की तरह प्रसारित किया जाएगा रामचरितमानस से आज का प्रसंग। अमृत कलश कार्यक्रम के अंतर्गत 7 बजे सुनिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना विषय पर जानकारी, प्रस्तुति होगी असीम सक्सेना की। फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे हम लेकर हाजिर होंगे रोजाना की तरह 7:31 पर। 102.9 मॉर्निंग हिट्स में नए फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे 8:45 पर।

प्रेरक प्रसंग में आज 9:25 पर सुनवाई जाएगी भगवान बुद्ध की गौरव गाथा। 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नश्र किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत का प्रसारण समय रहेगा 9:50 पर। आज सुनिएगा मोहिंदर सिंह का गाया राग मिश्र गारा। तबले पर संगत देंगे निसार हुसैन, सारंगी संगत होगी जाकिर खां की। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर हम लेकर हाजिर होंगे 10:05 पर। सुनहरा दौर में 10:30 पर सुनिएगा 80 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। धरोहर के अंतर्गत 11 बजे आप सुन सकेंगे धारावाहिक और फन बेमिसाल है। 11:30 पर मन भवन में आज सुनिएगा एक ही गीतकार के गाए कुछ फिल्मी गीत। दोपहर 12:10 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम गीत आपके नाम। 1:15 पर धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा लेख राज।

सुन सकेंगे रोज़ाना की तरह 5:15 पर। कृषि जगत में 5:45 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे चर्चा भिंडी की सफल खेती। इसके अलावा भेंटवार्ता होगी सफल कृषि स्टार्टअप, सफल महिला कृषक से होगी बातचीत। आज की सफल महिला कृषक होंगी श्रीमती नीतू गुप्ता। 6:30 पर इंग्लैंड में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष और दूसरी सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। आज सुनिए भाग संख्या 331।

महाबली मेघनाद जामवान के त्रिशूल प्रहार से मूर्छित हो गया था। जब उसकी मूर्छा टूटी तो अपने पिता को अपने पास चिंतित देख अत्यंत लज्जित हुआ। अविजित होने के लिए यज्ञ करने हेतु उसने एक पर्वत कंदरा की शरण ली। विभीषण को शंका हुई कि यदि मेघनाद ने यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसका वध करना असंभव हो जाएगा। जब विभीषण ने अपनी चिंता का कारण श्री राम को सुनाया तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ वानरों का एक दल मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने मन में ठान लिया कि आज वे अवश्य उसका वध करेंगे, यदि नहीं कर सकेंगे तो वे श्री राम का सेवक होने और कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। वानरों ने यज्ञ विध्वंस के लिए अनेक उत्पात किए किंतु वो सब विफल रहे। तब वानर अनेक प्रकार से मेघनाद की प्रशंसा करने लगे, फिर भी यज्ञ भंग नहीं हुआ। अंत में वानरों ने जब उसे लातों से मारकर केश पकड़ वेदी से उठाने की चेष्टा की तो मेघनाद का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने हनुमान और अंगद की छाती में त्रिशूल मार उन्हें धराशायी कर दिया। स्वयं कभी अंतर्ध्यान हो जाता फिर तत्काल प्रकट भी, लेकिन लक्ष्मण के प्रहार से वो अपने को बचा नहीं सका। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेघनाद का वध उन्हीं के हाथों हुआ।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज का प्रसंग। आज आपने सुनी भाग संख्या 331। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे संस्कृत में समाचार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूटनीतिक कार्यं विहितम्। विदेशमन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तथा तस्य कनाडादेशस्य समकक्षीयेण मार्क कार्नी इत्यनेन च भारत कनाडादेशयोः सम्बन्धेषु सकारात्मकतायाः स्वागतं कृतम्। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इत्यनेन सह मिलित्वा प्रधानमंत्री श्रीमोदी 35वर्षस्य दूरदृष्ट्यान्तर्गतं भारत यूके सम्बन्धानां प्रगतिं समीक्षितवान्। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलनावधौ UAE अध्यक्षेण शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सहापि मिलितवान्। तथा च पश्चिम एशिया क्षेत्रे चिरस्थायि शान्तिं सुरक्षां स्थिरतां च प्रवर्धयितुं संवादस्य कूटनीतेः अन्ताराष्ट्रियविधेः सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च सम्मानस्य महत्वम् अधोरेखितम्। केन्यादेशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विकदक्षिणस्य आकांक्षासु दीर्घकालं यावत् सहभागित्वं कुर्वन्ति। जापानदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापानदेशयोः सम्बन्धः विविधेषु क्षेत्रेषु निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांसदेशस्य एवियन नगरम् अद्य वैश्विककूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागिदेशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिकसम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखरसम्मेलनावधौ भविष्यति। 25,000 फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अंतिम वारम मेलनानंतरम उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविध क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः तथा च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षा अस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम् अतिरिच्य अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय सन्तुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिकवृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुतप्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री EU परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोष्टा इत्यनेन सह EU अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सहापि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्ताराष्ट्रिय ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणम् इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्तीति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडाङ्गणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिकक्रीडायां फ्रांसदेशेन सेनेगलदेशं 3-1 इति अङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश। कार्यक्रम में आज का विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रस्तुति है असीम सक्सेना की।
2: श्रोताओं, केंद्र सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। देश के चहुमुखी विकास की आकांक्षा के साथ भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्वीकृत की। इस योजना में तीन मंत्रालयों, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की विभिन्न जल संरक्षण, संचयन एवं भूमि जल संवर्धन तथा जल वितरण संबंधी कार्यों को समेकित किया गया है। राज्यों द्वारा धनराशि के प्रयोग और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्षवार उपयोग तथा कुल आवंटित धनराशि भी इस कार्यक्रम के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि हर खेत को पानी तथा प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन के साथ साथ पूरे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। यूं तो कई दशकों के प्रयास रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा आधारित है। वर्षा के अभाव में किसानों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अस्तित्व में आई। मुख्य उद्देश्य रहा उपजिला, जिला स्तर, राज्य स्तर पर सिंचाई योजना तैयार करके खेतों तक जल पहुंचाना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन करना, जलाशय पुनर्भरण सतत जल संरक्षण प्रणाली प्रचलनों के साथ साथ भूमि जल सृजन, पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना तथा जल उपलब्धि के अनुसार फसलों का चयन करना, आधुनिक सिंचाई प्रणाली ड्रिप एवं स्प्रिंकलर कार्यक्रम को लागू करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्य रूप से मृदा एवं जल संरक्षण हेतु छोटे तालाब, जल संचयन संरचना के साथ साथ छोटे छोटे बांधों तथा समोच्च मेढ़ निर्माण आदि कार्यों का क्रियान्वयन करके राज्य सरकार के माध्यम से समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत ये प्रबंधन करेगा। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय संरक्षित जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए नाली इत्यादि विकास के साथ साथ त्वरित सिंचाई लाभ संबंधी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेगा। कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग वर्षा जल संरक्षण, जल बहाव नियंत्रण कार्य, जल उपलब्धता के अनुसार फसल उत्पादन, कृषि वानिकी, चारागाह विकास के साथ साथ कृषि जीविकोपार्जन के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाएगा। जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना का उपयोग किया जाएगा, इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। विभिन्न फसलों की सिंचाई के लिए ये एक क्रांतिकारी उपाय साबित होगा। जिला सिंचाई योजना तैयार करते समय माननीय संसद सदस्य, स्थानीय विधायकों के सुझाव भी महत्वपूर्ण होंगे और इनको जिला सिंचाई परियोजना में सम्मिलित किया जाएगा। जब जिला स्तरीय परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा तो स्थानीय

0: सदस्य के उपयोगी सुझावों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। सालों से भारत देश को कृषि प्रधान देश ही कहा जा रहा है और ये बात सत्य भी है। देश की बढ़ती आबादी के कारण हर साल देश में अनाज की मांग भी बढ़ रही है। देश की खाद्य आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अच्छी खेती बहुत जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के हित के लिए बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की है। अच्छी खेती के लिए आवश्यक है पानी, वो भी प्रचुर मात्रा में। लेकिन उस स्थिति में जब मानसून का कोई भरोसा नहीं रह गया है, कई बार कई शहर सूखे की चपेट में आ जाते हैं, जिस वजह से किसानों की पूरी फसल खराब हो जाती है। आज भी भारत देश में हर साल कई किसान कर्जे और खराब फसल के डर से आत्महत्या कर लेते हैं। देश की सरकार की यही कोशिश रहती है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पूरा हक मिले। बेहतर से बेहतर योजना लाई गई है। पिछले सालों में देश ने अविस्मरणीय विकास किया है। अच्छी फसल के लिए किसानों के लिए वर्कशॉप भी आयोजित की गई हैं, जिसमें यह सिखाया जाता है कि किस तरह से पानी का उपयोग किया जाए, किस खाद के क्या लाभ हैं। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इन्हीं उद्देश्यों के साथ अस्तित्व में आई है। योजना की शुरुआत 50,000 करोड़ के बजट के साथ 1 जुलाई 2015 में हुई। योजना की टैगलाइन थी मोर क्रॉप पर ड्रॉप। योजना का मिशन भी यही था कि देश के सभी संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो सके, जिससे देश की जनता को लाभ मिले। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि सिंचाई विभाग में निवेश को आकर्षित किया जा सके, जिससे कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो और अच्छी किस्म की फसल प्राप्त हो। सरकार की मंशा है कि इस योजना के द्वारा खेती के लिए जमीन का विस्तार अधिक हो, और ये तभी हो सकता है जब सिंचाई की सुविधा किसानों के लिए उपलब्ध होगी। सरकार इस बात का भी ख्याल रखेगी इस योजना के द्वारा कि देश के पानी का उपयोग सही ढंग से सही चीज के काम आए, पानी की बर्बादी कम हो, किसान प्रोत्साहित हो, जल के महत्व को जाने। ये भी कोशिश की जा रही है इस योजना के द्वारा कि किसान सिंचाई के लिए नगर पालिका के बेकार पानी का पुनः प्रयोग करना सीखें। इससे पानी की बचत भी होगी और फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा। यह योजना केंद्रीय सरकार द्वारा अंतर मंत्रालय यानी कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NSC के द्वारा चलाई जा रही है और प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। कृषि विभाग में पानी का सही प्रबंधन और उसका सही रखरखाव इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। शुरुआत में राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसको रखा गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि विभाग में बेहतर से बेहतर सिंचाई सुविधा देना चाहती है। हर खेत में पानी, ये टैगलाइन इस योजना के साथ जुड़ी है, अर्थात देश के हर खेत को पानी की सुविधा, जो संकेत है कि मुख्य लक्ष्य है प्रतिदिन अधिक फसल की प्राप्ति हो सके। ये योजना किसानों के लिए कृषि से जुड़े अन्य कार्यक्रम भी चलाएगी, जिससे किसानों को कृषि से जुड़े नए नए यंत्र, खाद, अनुसंधानों और अन्य जानकारियों के विषय में भी बताया जाएगा। भारत देश ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है, कृषि विभाग में भी विकास है, लेकिन किसानों को जानकारी नहीं है। अनाज हर देश की पहली जरूरत होती है और इसके बिना देश के लोगों को खाना नहीं मिलता। खाना नहीं होगा, जीवन संकट में आ जाएगा। किसान वर्ग ही है जो देश के अमीर से अमीर लोगों को अनाज मुहैया कराता है। इतना महत्वपूर्ण काम करने के बाद भी अफसोस की बात है कि भारत देश का किसान आज गरीब है, हालत खराब होती जा रही है। और इन सब बातों की एक ही वजह है कि किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। कई बार उन्हें खुद अपने हक के बारे में जानकारी नहीं होती। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं पानी का प्रबंधन और आवंटन की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए। खेती के मुख्य क्षेत्र जैसे जल मंदिर, पानी के भंडार और जलाशय को विकसित किया जाए, सिंचाई को बढ़ावा मिले, खेती की जमीन के पास ही जल स्रोत बनाए जाएं, जो जल स्रोत हैं उनका विस्तार किया जाए और बड़ा किया जाए उनको। किसानों को यह बताया जाए कि वर्षा के पानी को कैसे एकत्र किया जाता है और कैसे सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे सिंचाई के लिए अधिक से अधिक जल स्रोत किसानों को मिल सकेंगे। इस तरह के और भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत, ताकि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता कम हो सके और फसल उत्पादन अधिक हो सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार से हाथ मिलाया है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। राज्य के कृषि विभाग अपने अपने राज्य के अंदर इस योजना के तहत काम कर रहे हैं और इस बात की पूरी जानकारी केंद्र सरकार के पास भी है। जो राज्य इस योजना के लिए दिए गए फंड का उपयोग कर अपने राज्य में सिंचाई सुविधा चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले जिला स्तर पर सिंचाई की योजना बनानी होगी। सिंचाई योजना को केंद्रीय सरकार को दिखाना होगा। इसके अलावा राज्य को पूरे विस्तार के साथ ये समझाना होगा कि वो इस योजना पर कैसे काम कर रहे हैं, कार्यान्वयन किस तरह से होगा और बेहतर कृषि उत्पादन के लिए क्या कुछ नया किया जा सकता है। ये सब कार्यविधि होने के पश्चात राज्य को इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला फंड दिया जाएगा। अभी हाल ही में मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई योजना की घोषणा की है, जो माइक्रो इरिगेशन को फंड प्रदान करेगी और माइक्रो सिंचाई फंड योजना वित्त मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इसे पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा, जिसके लिए अनुमानित 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इस योजना का फ्रेमवर्क नाबार्ड द्वारा बनाया जाएगा। साल 2018-19 के लिए इस योजना में लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। प्रति ड्रॉप अधिक फसल उत्पादन का प्रयत्न किया जाएगा। इसी के साथ भूमि का भी अधिक उपयोग संभव होगा और राज्य सरकार अपने क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन स्कीम को लागू करने के लिए इंसेंटिव और अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान करेंगे। भारत में इस योजना के अंतर्गत 69.5 हेक्टेयर भूमि लाने की क्षमता है। आगे आने वाले वर्षों में अधिकतम भूमि इसके अंतर्गत लाने का फैसला किया गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक नई शुरुआत, अनोखी शुरुआत, किसानों की आमदनी दुगनी करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कड़ी और मानसून पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक अभिनव प्रयास, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
1: अमृत कलश कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना विषय पर जानकारी। प्रस्तुति थी असीम सक्सेना की। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की जबा में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: हमारा अभिमान है,
1: हमारी एकता,
0: हमारा मान है,
1: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
0: हमारी शान है
1: इस एकता की सुदृढ़ता।
0: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बनें।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर याद दिला दें, शाम 6:30 पर इंग्लैंड में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री प्रसारित की जाएगी।

0: और भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की जबान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट UG पुनः परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट UG पुनः परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट UG पुनः परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट UG पुनः परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जून को प्रस्तावित नीट UG परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री योगी ने मुहर्रम के दौरान निर्धारित नियमों व मानकों का पालन करवाते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आगामी 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। श्री खन्ना ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
3: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
4: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़ी कई मांगों को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। ये जानकारी प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश को कई रेल सेवाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित भी करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि उनकी मांग पर दोहरेघाट ओडियार नई मेमू ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन और छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किए जाने को मंजूरी मिल गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनर्परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम सुबह सवेरे का।

फिल्मी गीतों का एंटरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे लेकर हाजिर हूँ आपकी रेडियो सहेली इरम फातिमा। कबूल कीजिए प्यार भरा नमस्कार आदाब। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और कार्यक्रम हमारा सुन रहे होंगे। दोस्तों, गर्मी बे इंतहा है। इसमें न सिर्फ हमें गर्मी से बचने की जरूरत है बल्कि पक्षियों को भी पानी का जरूरत है, पानी की, और उसके लिए इंतजाम करें दाना पानी के लिए, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप और गर्मी में उमस में हर जीव, हर

प्राणी परेशान है, सबका ख्याल रखना ही इंसानियत है। आपने देखा होगा कि गर्मी की वजह से जो ये आवारा कुत्ते हैं ये बौलाए हुए हैं और बहुत से लोगों को काट रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो भी अपने घर का बचा हुआ खाना है या किसी बर्तन में पानी अपने घर के बाहर रख दें, ताकि इनको भी भूख प्यास ना तड़पाए और ये चलते राहगीरों को, बच्चों को ना काटें। क्योंकि सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं होता है गर्मी से, भूख से प्यास से हर जीव को ये एहसास होता है। साथ ही बात करेंगे स्वच्छता की। तो दोस्तों, अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखिए, क्योंकि साफ सफाई रखने से ही चारों तरफ स्वच्छता का एहसास होता है और हमारी सेहत बनी रहती है। संक्रामक रोग कभी भी नहीं फैल पाते। और अब आज के इतिहास की बात कर लें, तो आज 17 जून है। आज के इतिहास में बहुत कुछ खास है जिसे हम आपसे साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल का निधन हुआ था आज ही के दिन, जिनकी याद में शाहजहां ने आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण कराया था। अठारह की क्रांति की महान नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। 1991 में भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मरने के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था आज ही के दिन। आज ही के दिन 2008 में भारत के पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का सफलतापूर्वक परीक्षण बेंगलुरु में किया गया था। 2012 में दिग्गज भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन का खिताब अपने नाम किया था। आज ही के दिन 1885 में फ्रांस द्वारा अमेरिका को तोहफे में दिया गया विशाल स्टेचू ऑफ लिबर्टी समुद्री जहाज के जरिए न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा। 1944 आइसलैंड को डेनमार्क से पूर्ण स्वतंत्रता मिली और वो एक स्वतंत्र गणराज्य बना आज ही के दिन। आज ही के दिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस का जन्म 1973 में हुआ। 1928 में अमेलिया एयरहार्ट विमान से अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। ये था आज का इतिहास। और अब एक नज़र आज की खबरों पर। केंद्र सरकार ने 21 जून को फिर से होने वाले नीट यूजी मद्देनजर मंगलवार को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक लगा दी। सरकार ने यह कदम टेलीग्राम के जरिए पिछले कुछ दिनों से परीक्षा से जुड़ा झूठ फैलाने और किए जा रहे दुष्प्रचार से निपटने के लिए उठाया है। इसके अलावा सरकार ने टेलीग्राम को अपने मैसेज एडिट फीचर को परीक्षा के बाद भी 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी इस प्रतिबंध के बाद देश में टेलीग्राम पर पहले से ही भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। नीट यूजी कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई है। NTA के मुताबिक नीट यूजी को दोबारा कराए जाने की घोषणा के बाद से ही कुछ लोग टेलीग्राम के जरिए इस परीक्षा के पेपर लीक होने की फर्जी दावे कर रहे थे, साथ ही परीक्षा से जुड़ी झूठी जानकारी भी प्रसारित कर रहे थे। इससे बहुत से लोगों में चिंता और छात्रों में मानसिक तनाव हो रहा था। हमें इसलिए ये कार्रवाई करना पड़ी। दोस्तों, कल मुहर्रम का चांद नजर आ गया, जिसके बाद ही अजाखाने सजने लगे, घरों घरों मातम होने लगा और अलाम इमामबाड़े सजाए जाने लगे। चारों तरफ गम का माहौल बन गया और गम की घटा छा गई। शाही

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

दोस्तों, हम बात करते हैं आज के विशेष दिवस के बारे में। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है, जो कि हर साल 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, वो धरती माँ को सूखे से बचाने के लिए है। ये दिन मरुस्थलीकरण, भूमि और सूखे के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इनसे निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस याद दिलाता है कि भूमि क्षरण को रोका जा सकता है और स्थायी भूमि प्रबंधन संभव है। इसका उद्देश्य भूमि को बंजर होने से बचाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा

0: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में की गई थी और इसे पहली बार 1995 में मनाया गया था। भारत में मरुस्थलीकरण और भूमि के बंजरपन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, पानी का संरक्षण करना और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ये योजना खास तौर पर उन इलाकों के लिए है जहां मरुस्थल का असर सबसे ज्यादा है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पानी के संकट को दूर करना, वृक्षारोपण करना और मिट्टी के कटाव को रोकना शामिल है। हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के नारे के साथ ये योजना पानी के सही उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। दोस्तों, कुरान में भी धरती के लिए, ज़मीन के लिए कहा गया है कि आहिस्ता चलिए, इसको तकलीफ ना दें। और पानी की बचत के लिए भी हुक्म कुरान पाक में आया है कि पानी को व्यर्थ ना बहाएं। ये एक अनमोल नेमत है जिसकी वजह से जलवायु और पर्यावरण प्रभावित होता है। दोस्तों, इसी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस को के बारे में और जानकारी देने के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर बेबी तबस्सुम से ये जानकारी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी रामपुर के सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। मैं प्रोफेसर बेबी तबस्सुम, गवर्नमेंट रिजर्व पीजी कॉलेज रामपुर, आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विषय मरुस्थलीकरण अर्थात सूखती धरती पर अपने विचार साझा कर रही हूँ। धरती केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन, हमारी कृषि, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे अस्तित्व का आधार है। जब यही उपजाऊ धरती अपनी उर्वरता खोने लगती है, हरियाली समाप्त होने लगती है और भूमि धीरे धीरे बंजर बन जाती है, तब इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। मरुस्थलीकरण का अर्थ केवल रेगिस्तान का फैलना नहीं है, बल्कि भूमि की उत्पादकता और गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आना भी है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निरोधक अभी समय UNCCG के अनुसार यह समस्या विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और कम आर्द्र क्षेत्रों में भूमि क्षरण के रूप में दिखाई देती है। आज विश्व के अनेक देश इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास के कारण भूमि की गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है। भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण न केवल कृषि उत्पादन को कम करते हैं, बल्कि जल संकट, जैव विविधता की हानि और आजीविका के संकट को भी जन्म देते हैं। यदि हम मरुस्थलीकरण के कारणों पर दृष्टि डालें तो इनमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारण शामिल हैं। प्राकृतिक कारणों में लंबे समय तक सूखा पड़ना, वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन, मिट्टी का कटाव तथा जलवायु परिवर्तन प्रमुख हैं। वहीं मानवीय कारणों में वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, असंतुलित कृषि पद्धतियाँ, भूजल का अंधाधुंध दोहन और अनियोजित शहरीकरण शामिल हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं तो मिट्टी को बांधे रखने वाली जड़ें समाप्त हो जाती हैं, जिससे हवा और पानी के कारण मिट्टी का क्षरण बढ़ जाता है। हमारे देश में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और कुछ अन्य क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की समस्या अधिक गंभीर रूप में देखी जाती है। राजस्थान का बड़ा भूभाग इस समस्या से प्रभावित है, जहाँ तेज हवाएं उपजाऊ मिट्टी को उड़ाकर ले जाती हैं और भूमि की उत्पादकता घटती जाती है। मरुस्थलीकरण का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। भूमि की उर्वरता घटने से कृषि उत्पादन कम हो जाता है, किसानों की आय प्रभावित होती है और खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होता है। जल स्रोत सूखने लगते हैं, पशुओं के लिए चारा कम हो जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का पलायन बढ़ने लगता है। यही कारण है कि मरुस्थलीकरण को आज विकास और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण का भी गहरा संबंध है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा और बार बार आने वाले सूखे भूमि को और अधिक कमजोर बना देते हैं। दूसरी ओर जब भूमि बंजर होती है और वनस्पति कम हो जाती है, तब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता भी घट जाती है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि इस समस्या का आखिर समाधान क्या है। सबसे पहला और प्रभावी उपाय है वृक्षारोपण और वन संरक्षण। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर और मौजूदा वनों की रक्षा करके हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है जल संरक्षण। वर्षा जल संचयन, तालाबों का पुनर्जीवन और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग जल की उपलब्धता बढ़ा सकता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकें जल की बचत के साथ भूमि की गुणवत्ता को भी बनाए रखने में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना भी आवश्यक है। फसल चक्र, जैविक खेती, मल्चिंग, कृषि वानिकी तथा मृदा संरक्षण तकनीकें भूमि की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की आवश्यकता है। भारत सरकार भी इस दिशा में अनेक प्रयास कर रही है। भारत भूमि ने भूमि क्षरण को रोकने और बंजर भूमि के पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं सरकार ने प्रारंभ की हैं। भारतवर्ष 2030 तक बड़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त भूमि को पुनर्स्थापित करने के लक्ष्य पर कार्य कर रहा है। जल संरक्षण, वनीकरण और सतत भूमि प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। प्रिय श्रोताओं, मरुस्थलीकरण केवल सरकारें या वैज्ञानिकों की चिंता का विषय नहीं है, यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। यदि हम अपने आसपास पेड़ लगाएं, जल का संरक्षण करें, मिट्टी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं तथा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें तो हम इस समस्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि धरती हमारी विरासत नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। यदि आज हम अपनी धरती को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते तो कल हमारे आने वाली पीढ़ियां जल, भोजन और स्वच्छ पर्यावरण के लिए तरस जाएंगी। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपनी धरती को हरा भरा, उपजाऊ और जीवनदायी बनाए रखने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि धरती बचेगी तभी जीवन बचेगा। इस संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।

साथ ही इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो सहेली इरम फातिमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का एंटरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
6: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
7: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
6: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
8: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
6: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
9: एनटीए इज कमिटेड,
10: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
9: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
4: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
11: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
4: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
5: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
12: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on

0: ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Earlier yesterday, the Prime Minister held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the summit. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya and South Korea joined the appeal for enhanced measures, including contact tracing, border surveillance and community engagement. The leaders also pledged support for the development of vaccines, diagnostics and treatments for the rare Ebola strain. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Keshav Multipurpose Dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a Memorandum of Understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshav project will be placed before the Union Cabinet for approval. Under the agreed funding pattern, the central government will provide 90% assistance for the water component of the project, while the remaining 10% will be shared by the six states. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper.
1: It clarified that there is no leaked paper for the re-examination. It said that fake proof videos showing chats from before the exams are also being circulated. NTA also shared the video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country. Talking to media, Mr. Singh said that NTA is committed to ensuring that no malpractice happens and assured that every question paper has been made in a complete secure manner. He said the agency has added layers of security to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers, translating, printing, moving or storing them till the date of examination is compromised in any manner. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
0: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
2: Over the past 12 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy, instilling a sense of pride among millions of citizens. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Sri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Built in the traditional Nagra style, the temple stands as a symbol of faith, devotion and India's architectural excellence. Talking to Akashvani News, Pankaj Jaria, a devotee who recently visited the temple, shared his experience.
3: Mera naam Pankaj Jaria hai.
4: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Sri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table locks and displays which look very divine.
2: In Ujjain in Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The total cost of the project is around 850 crore rupees. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the sacred Kashi Vishwanath Temple with the River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. From 2014 to March 2025, work commenced on 580 development projects in Kashi, undertaken at a total cost of over 48,000 crore rupees. Talking to Akashvani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the Kashi Vishwanath corridor is providing ease of access to pilgrims visiting the temple.
5: My name is Priyanshu Singh. I am a resident of Varanasi. Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
2: Saklain Akhtar, Akashvani News, Delhi.
0: In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ikana Cricket Stadium in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. In women's cricket, India will take on Netherlands in their second Group A clash of ICC Women's T20 World Cup at Headingley in Leeds today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. In football, Norway returned to the FIFA World Cup in style with a 4-1 win over Iraq in their Group I opener at the Boston Stadium in the United States this morning. Norway's Erling Haaland netted twice to make his World Cup debut special. The scoreline now put Norway top of Group I. Earlier, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group I of FIFA World Cup 2026. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala and Mahe. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
6: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump present, Modi flags seafarers' safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, "Peace without peace," writes, "The announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem.
0: problem.
6: The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहिया के लिए तवील अरसे से जेरे इल्तवा केशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबेन इत्तेफाकी राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। फ्रांस के शहर एवियो में कल G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक राबता इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में लड़ाई से आलमी तजारत में रुकावट पड़ गई है और जानी नुकसान भी हुआ है। मगरबी एशिया में बहरी तिजारत को लाहिक बढ़ते हुए खतरात और अदम इस्तेहकाम की इंसानी कीमत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मल्लाहों की सलामती को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है जो आलमी बहरी तिजारत के जरिए सभी मुल्कों को बाहम मुंसलिक करते हैं। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर आजम ने बैन अवी साझेदारी कायम करने, खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अवी साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मुसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैन अवी कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैन अवी यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है और इस पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर बैन अवी साझेदारी में मुजाकरात और सिफारतकारी को तरजीह दिए जाने की जरूरत है। फ्रांस का शहर एवियन इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज बना हुआ है। वहां G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस अहम मरहले में दाखिल हो रही है। भारत एक साझेदार मुल्क की हैसियत से इसमें शिरकत कर रहा है। सबकी निगाहें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज होने वाली दोतरफा मीटिंग पर लगी हुई हैं, जिसका काफी इंतजार किया जा रहा था। यह मुलाकात सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हो रही है। फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC में दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात के बाद से यह पहली बिल मुशाफा मीटिंग है। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इश्तराक को मजीद वसअत देने के लिए वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
8: ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है क्योंकि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और आलमी बिरादरी भी पेचीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए अब और ज्यादा भारत का रुख कर रही है। आलमी मामलात पर तबादले ख्याल को जहद देने में भारत के बढ़ते हुए रोल से उसका सिफारती राबते का दायरा बढ़ने और मुख्तलिफ फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ सरगम राबतों की अक्कासी होती है। कल सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक राबता इजलास में वजीर आजम ने बैन अक्वामी साझेदारी कायम करने और खास तौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने हमेशा इंसानियत मुकद्दम का रवैया इख्तियार किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की ज़ेर कमान किए गए मुख्तलिफ इकदामात से इस बात की अक्कासी भी होती है, जिनमें बैन अक्वामी शमसी इत्तेहाद कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का मखलूत इत्तेहाद, आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम मुहिम शामिल हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अक्वामी साझेदारी के भारत के नजरिए की बुनियाद वसुधे कुटुंबकम यानी दुनिया एक कुनबा है के दायमी फलसफे में पिन्हा है। फ्रांस के शहर एवियां से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
7: अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 वर्किंग इजलास में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सभी के फायदे के लिए मुतवाजन जामे और पायदार माशी तरक्की को फाल बनाना। इसके अलावा जनाब मोदी मसनूई जहानत के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन के सदर वॉन देर लेन के साथ सेफरीकी मीटिंग करेंगे और जर्मनी के चांसलर फ्राइडरिख मर्ज के साथ दोतरफा मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कनाडा और बरतानिया के वज़राए आजम और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा बातचीत की थी। जनाब मोदी ने केनिया, मिस्र और जनूबी कोरिया के सुदूर नीज जापान की वजीर आजम से भी मुलाकात की। G7 मुल्कों ने भारत समेत कई साझेदार मुल्कों के साथ सेहत और तरक्की से मुतालिक आलमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए कई इकदामात का ऐलान किया है। G7 के रहनुमाओं ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी के फिर से जोर पकड़ने के तनाजुर में तालमेल के साथ बैन अलाक्वामी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। भारत, मिस्र, केनिया और जनूबी कोरिया ने भी इकदामात में तेजी लाने की अपील की, जिसमें राबते में आने वाले अफराद का पता लगाना, सरहद पर निगरानी और बेदारी पैदा करना शामिल है। इन रहनुमाओं ने इबोला वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार करने, तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए मदद करने का भी वादा किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने तवील अरसे से जेर इल्तवा केशाऊ कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट के मामले पर कल नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस प्रोजेक्ट का मकसद दरियाए जमुना का अहिया करना है। एक बयान में उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि मजकूरा प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत करने से इत्तेफाक किया है। इसके बाद केशाऊ प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए मरकजी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात का इनाकात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने वालिदैन और उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि वो नीट इम्तिहानात से पहले घोटाला साजों से खबरदार रहें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि टेलीग्राम पर ये घोटाला साज कुछ चैनल चला रहे हैं जिन पर ये दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान के पर्चे फराहम करने के दावे कर रहे हैं और इसके लिए ये लोग 14,000 से 25,000 रुपए तक मांग रहे हैं। एजेंसी ने वाजे किया है कि इस दोबारा इम्तिहान के लिए कोई पर्चा इफ्शा नहीं हुआ है। उसने कहा है कि इस सिलसिले में फर्जी सबूत के वीडियोस भी गर्दिश कर रहे हैं जिनमें इम्तिहान से पहले की चैट्स दिखाई गई हैं। NTA ने अपने डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह की वीडियो भी जारी की है जिसमें वो मुल्क में इस ऐप तक रसाई को ब्लॉक करने की वजह बता रहे हैं। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क की विरासत के तहफ्फुज और फरोग के तहत हुकूमत के इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
9: जनवरी 2024 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुश्शान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंजाम दी, जो सदियों से जारी एक उमंग को पूरा करने का वक्त था। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात

0: करते हुए एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुल्क के नाम वक्फ किया गया। इस राहदारी में अजीमुशान मुजस्मों, म्यूरल्स और फने तामीर के जरिए भगवान शिव की जिंदगी और रिवायतों की अक्कासी की गई है। वाराणसी में दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ राहदारी का इफ्तिताह किया गया था। इस राहदारी के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से मिलाया गया है। हमारे नामानिकार से बात करते हुए वाराणसी के एक शहरी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ राहदारी से मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को काफी सहूलत मुहैया हुई है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: इन बड़ी तब्दीलियों से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के साथ साथ सकाफती जड़ों को मजबूत करने की जानिब मुल्क के अहद की अक्कासी होती है।
3: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कुछ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। IMD के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक का इम्कान है। इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के हालात का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा और ओडिशा में आज गर्मी और हफ्स का मौसम रह सकता है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे है और वो आज का मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खवातीन क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंगले में ICC खवातीन T20 आलमी कप में भारत और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम इतवार को बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त देने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। फुटबॉल में नॉर्वे ने फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप 1 के अपने पहले मैच में इराक पर 4-1 से जीत हासिल करके वापसी की है। अब नॉर्वे ग्रुप 1 में सरफहरिस्त आ गया है। इससे पहले फ्रांस ने न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा आलमी कप 2026 के ग्रुप 1 के पहले मैच में सेनेगाल को 3-1 से हराया था। इस मैच में काइलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने आलमी कप में लियोनेल मेस्सी का भी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
0: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इंकलाब और कई दीगर अखबारात ने NEET UG दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी की खबर को अपने सफ़े वल पर शाये किया है। खांसी के सिरप सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत। खांसी के सिरप फरोख्त की सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर नुमाया किया है कि आने वाली नस्ल के पास मुल्क में तब्दीली लाने के लिए दरकार मुनफरिद तवानाई और नया अज़्म मौजूद है। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अलाक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। अमरीका का B-52 बम्बार तैयारा परवाज के फौरन बाद गिरकर तबाह, हादसे में 8 अफराद की मौत।
3: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहिया के लिए तवील अरसे से जेरे

102.9 मॉर्निंग हिट्स का पहला गीत हमने लिया है फिल्म छिछोरे से, आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

कर दूं पहले। एजेंट विनोद, लीजिए सुनिए हमसिका और अरिजीत सिंह की आवाजों में इस फिल्म का गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

अभी आपने सुना फिल्म बाईपास रोड फिल्म का ये गीत, और अब अगला गीत अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में भारत फिल्म से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारत फिल्म का ये गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नए फिल्मी गीत कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स में। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशरी की जाएगी जिले की हलचल।

0: अंबेडकर नगर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
1: केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर अंबेडकर नगर के सभी विकास खंडों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर तबके के लोगों को लाभ पहुंचा रही है और इसी का परिणाम है कि आज हमारा देश सशक्त बन रहा है। अंबेडकर नगर में भूमि विवादों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ईसाप्रिया के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों के ग्राम पंचायतों में भूमि विवाद निस्तारण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकबरपुर तहसील की उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि ग्राम प्रतापपुर चमुरखा में 56, लोरपुर पालहन में 75, चोनगांव में 39, तारा खुर्द में 30 और औरंगाबाद में 35 भूमि विवादों का निस्तारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मिझौड़ा चीनी मिल में जन जागरूकता एवं बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले या सुनिश्चित किया जाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंबेडकर नगर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 21 जुलाई को शून्य दुर्घटना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने अंबेडकर नगर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान चारू चौधरी ने जिला अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर, वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। चारू चौधरी ने सर्किट हाउस में आयोजित जन चौपाल में महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके निदान का निर्देश दिया। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ईसाप्रिया की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़करण पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की यह योजना पक्के मकान में रहने की गरीबों की मुराद पूरी कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी इंद्रावती ने बताया,
2: हमारा परिवार एक झोपड़ी में रहता था, पक्का मकान एक सपना जैसे था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे उस सपने को पूरा कर दिया। अब हमारे पास अपना पक्का घर है।
1: अंबेडकर नगर में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। महिला पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थलों, बैंकों, तहसीलों आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मुहर्रम के त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पुख्ता तैयारी कर रहा है। संवेदनशील इलाकों में जगह जगह सुरक्षा चौकियां बनाई जा रही हैं। जिलाधिकारी ईसाप्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने शहर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अंबेडकर नगर में इस समय विकास कार्य तेजी से चल रहा है। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और नाली निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अंबेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज द्वारा मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कॉलेज प्रशासन अब शाम 4 बजे तक ओपीडी का संचालन कर रहा है। शाम 4 बजे तक मरीजों को अस्पताल की सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में सिर्फ अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में लागू हुई है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार यादव ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है और इसका लाभ भी मिल रहा है। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना को धरातल पर लागू करने के लिए प्रशासन सक्रिय है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ईसाप्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपद के कृषकों एवं उद्यमियों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त लक्ष्य एवं अनुदान आदि की समीक्षा की गई। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत इच्छुक कृषक अपना पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अंबेडकर नगर को विभिन्न उद्यानिक कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें सब्जी क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, फल क्षेत्र विस्तार, मसाला फसलों का विकास, प्याज क्षेत्र विस्तार, फेसिंग मल्चिंग तथा सघन बागवानी कार्यक्रम शामिल। किसानों को टिशू कल्चर, मशरूम उत्पादन इकाई, EDBE, वर्मी बेड तथा मल्चिंग जैसे कार्यक्रमों का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के कृषकों से अधिक संख्या में योजना का लाभ लेने हेतु समय से आवेदन करने की अपील की है।
0: अंबेडकर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय निगम का।
3: जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद विगत 5 जून को पहली बार बांदा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक

0: दिशा निर्देश भी जारी किए। बाद में स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा बांदा का बेहतर विकास किस तरह से हो, इसको लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जनजीवन किस तरह से सुगम और व्यवस्थित हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जनपद के अधिकारी सरकार की आशा के अनुरूप जनता की बेहतर सेवा कर रहे हैं। जहां असुविधा होगी वहां और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह ने वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
1: केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करके सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से चर्चा करते हैं। जब भारत पे संकट हो तो विदेशी नागरिक नहीं भारत के नागरिक बन करके देश के प्रधानमंत्री जी का साथ दें। भारत की न्यायालय परीक्षण कर रही है कि राहुल गांधी भारतीय हैं भी या नहीं, इसी कारण वो भारत के विपरीत चर्चा करते हैं।
0: जनगणना कार्य को पूरा करने में प्रदेश में बांदा जनपद प्रथम स्थान पर है। बांदा में काफी तेज गति से जनगणना का कार्य संपन्न हुआ है। इस कार्य में समयबद्ध तरीके से बेहतर कार्य करने वाले प्रगणकों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस वर्ष बांदा पूरे देश में सबसे अधिक तापमान वाला जनपद बना रहा। इसके बावजूद भीषण गर्मी में भी यहां जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों ने पूरे मनोयोग से कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया। बांदा के जिलाधिकारी अमित आचेरी ने बताया कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के फल स्वरूप सिर्फ 15 दिनों में कार्य पूर्ण कर जनपद बांदा ने डिजिटल हाउस लिस्टिंग संबंधी कार्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया,
2: बांदा पूरे प्रदेश में सबसे पहला जनपद बना जिसने अपने फेज वन सेंसस को पूरा किया, और इसके लिए यहाँ के सभी बांदा के जनपदवासी सबको मैं शुक्रगुजार हूँ कि सबने इतना कॉपरेट किया हमारी टीम्स के साथ, और हमारे न्यूमरेटर्स, चार्ज ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, फील्ड ऑफिसर्स, ये सभी बधाई के पात्र हैं, और इन सबकी मेहनत के कारण हम लोग ये मुकाम हासिल कर पाए हैं।
0: यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य विगत 28 मई को बांदा पहुंचे, जहां वे जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम के समापन में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाद में मुख्यमंत्री ने भाजपा जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रगति के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमने पेड़ काटे लेकिन लगाने का काम नहीं किया। जल का दोहन तो किया लेकिन संरक्षण नहीं किया। हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सभी जगह जनता की सुनवाई हो, साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी समय से निस्तारण हो। कांग्रेस के द्वारा महंगाई पर प्रदर्शन करने को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा,
3: ऊर्जा संकट के समय एक गंदी राजनीति करने वालों को जनता ही जवाब दे। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश ने डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम न बढ़ाए। सबसे कम दाम बढ़ाने का काम कहीं हुआ है तो भारत में हुआ है।
0: पुलिस ने बांदा नगर क्षेत्र में नकली और मिश्रित गुटखा निर्माण करने वाली फैक्ट्री बरामद कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, और उसके कब्जे से लगभग 2 लाख की कीमत के निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा और गुटखा बनाने की सामग्री सहित बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेट रैपर भी बरामद किए हैं। बांदा की सहायक पुलिस अधीक्षक नेविष्टक ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के कालूकुआं मोहल्ले से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान पर नकली व अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है। जानकारी होने के बाद तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद गुटखा निर्माण कर रहे एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से पुलिस को अवैध गुटखा बनाने वाली सामग्री सहित भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा बरामद हुए हैं। जनपद के कमासिन क्षेत्र में 74.91 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सिंह वाहिनी पंप नहर परियोजना का कांड अब कार्य अब अंतिम चरण पे है। 2.5 साल में इस परियोजना का 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नवंबर माह तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इस कार्य की शुरुआत दिसंबर 2023 को हुई थी। इस आधुनिक पंप नहर की क्षमता 50 क्यूसेक की है। कमासिन और इसके आसपास के दर्जनों गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या होती है, लेकिन सिंह वाहिनी पंप नहर के निर्माण से अब किसानों की यह समस्या दूर हो जाएगी।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: चले। अभी आप मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम समात फरमा रहे थे और इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। इस उर्दू प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया गया। इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश किया निकहत सिद्दीकी ने।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से उर्दू कार्यक्रम।
2: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए उपशास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहिंदर सिंह का गाई ठुमरी राग मिश्र गारा में। तबले पर संगत दे रहे हैं निसार हुसैन और सारंगी पर जाकिर खान।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत में मोहिंदर सिंह की गायी ठुमरी राग मिश्र गारा में। तबले पर संगत दे रहे थे निसार हुसैन और सारंगी पर थे जाकिर खां। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम फिल्मी गीतों का, कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को इरम फातिमा का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, कार्यक्रम का पहला पत्र हमें लिख भेजा है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर ने। जसपुर उत्तराखंड से, मेहनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आशा रेडियो श्रोता संघ ने फरमाइश की है, जिनमें शामिल हैं अभिजीत गवाड़कर, राही श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर बदलापुर मुंबई से, सिद्धांत और प्रणीता गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, श्वेता सुमित और कुमारी धवनी गवाड़कर परी, लाटला टुक टुक। ओम रेडियो श्रोता संघ कोरी नांदेड़ महाराष्ट्र से अनुरोध किया है नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ ने, नलेश्वर नगर नरवेल से पी एस नहावकर और विशाल नहावकर ने, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयदेव विरक, मीका विरक, बोरी खुर्द से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत जगोताई, साक्षी ताई और संचित प्रथमेश स्वामी देशमुख, कुमारी प्राणी देशमुख मोताला, कुमारी सानवी देशमुख और करडा, साथ ही राजे जाधव देशमुख परिवार के सभी सदस्यों ने। बेरली से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णी, चंचल और अर्जुन गवनेकर, धीरज सवर सेरे ने। सुंदरखेड़ राजमाता नगर वाला बुलडाड़ा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार नरवाड़े ने। आप सभी ने सुनना चाहा है अनपढ़ फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आपने सुना फिल्म अनपढ़ में लता मंगेशकर को, और अब नीलकमल फिल्म में सुनिए मोहम्मद रफी को, जिसको सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है नास मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बट्टू शेख, बेगम इशरत अकरम, रूबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, टीना शेख ने, क्वाथ बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नूर महल महसूल से हुमैरा नाज, सुमेरा नाज, अदीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहाना शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर ने इसी गीत को सुना चाहा है। कनेरा मोहल्ला पटियारा से बत्ता परिवार के सभी सदस्यों ने, जिनमें शामिल है नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सुरेश और सुजला ठाकुर, ज्योति और रियांश ठाकुर ने, गांधी समाधि रोड रामपुर जिला अस्पताल के पास से गफार खान गर्जन का, राजिया खान, शमा परवीन, सिमरन खान, शमशाद अली अजम, रूमा खान, गुल अफशा, बॉबी खान, शहनाज, शमा खान, बाबू अंसारी, मिक्की खान, रजिया गफार, बुशरा खान, आसिम खान और हबीब अहमद इधरेसी। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोटखे, नंदा बोटखे, हनुमान बोटखे ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। उत्तम जमधट्टे, सौराज जमधट्टे ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान समरीन ने। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे कॉलोनी जगमाल से फरमाइश की है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्यों ने। आप सभी की फरमाइश पर मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत फिल्म नीलकमल से।

अनुरोध पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अभी आप सुन रहे थे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इसके लिए हमें पत्र जरूर लिखें। पत्र लिखने के लिए पता है, कार्यक्रम आपके अनुरोध पर द्वारा केंद्रीय निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901201। श्रोताओं, इसी के साथ इजाजत दीजिए अपनी रेडियो सहेली इरम फातिमा को। कार्यक्रम आपके अनुरोध पर यही संपन्न करने की। नमस्कार।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे 80 के दशक के कुछ फिल्मी गीत।

कार्यक्रम सुनहरा दौर में लीजिए सुनिए पहला गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। इसी माफ कीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुनहरा दौर यहीं संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

कार्यक्रम सुनहरा दौर में अभी आप सुन रहे थे 80 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब समय है धरोहर का। लीजिए सुनिए धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक और फन बेमिसाल है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इसका भाग संख्या 4।

श्रोताओं, इन दिनों आप प्रत्येक बुधवार की रात 9:30 बजे सुन रहे हैं चार बेत के सफर पर आधारित हमारा साप्ताहिक धारावाहिक और फन बेमिसाल है। इस धारावाहिक की तीसरी कड़ी में आपने सुना कि रोयलों की जिंदगी मुसलसल जंगों में गुजरी। जब 1774 में रियासत रामपुर कायम हो गई तो उन्हें कुछ सुकून मैसर आया। उन्हें पश्तो और हिंदको भाषा का लोकगीत चार बेता याद आया, जिसे वो अफगानिस्तान और सरहदी इलाकों में शौक से गाकर जी बहलाया करते थे। पठानों ने पश्तो और हिंदको भाषा की तर्ज पर उर्दू चार बेतें लिखना और गाना शुरू की। उर्दू चार बेत कोयों ने बड़ी आजादी से काम लिया और नई नई हयतों में चार बेतें लिखना शुरू की। वो पश्तो चार बेता की हयत के पाबंद नहीं रहे। उन्होंने शादी के शादियाने भी लिखे और दो बंदी चार बेतें भी। जब शौक बढ़ा तो चार बेत के उस्तादों में नई नई चार बेतें लिखने का मुकाबला होने लगा। इस मुकाबले का नतीजा ये निकला कि एक नई हयत की चार बेत वजूद में आई, जिसे जंजीरी चार बेत कहा जाता है और फन बेमिसाल है। आइए चार बेत के सफर की आगे की कहानी आज की चौथी कड़ी में सुनिए।

गजल के मुकाबले में चार बैत को खड़ा करने का काम अब्दुल करीम खान ने किया था और इसे अवाम में मकबूल बनाने की खिदमत उनके शागिर्दों और खलीफाओं ने अंजाम दी। उन्होंने अपनी अपनी चार बैतों की पार्टियां बना ली जिन्हें अखाड़ा कहा जाने लगा। पहलवानों के अखाड़ों की तरह चार बैत के अखाड़ों में दोस्ताना मुकाबले होने लगे। जब एक अखाड़े के उस्ताद ने जंजीरी चार बैत पेश की तो दूसरे अखाड़े के उस्ताद महबूब अली ने भी जंजीरी चार बैत का डंका बजा दिया।

0: कारों करके एक पहाड़ा महबूबे रत्ती बोल करिए अजब कराई रंग सिरते लैनी ए फुलकारे सब जख्मी मेरे अंग साढ़े नाल लावे यारे आके मलमा पटियां खोल फिर ना छलाते दीवाना महबूबे रत्ती बोल हथ मेहंदी दे नाल लाल तालो ताल सिरों पम डिठा अजब तेरा ख्याल मूते निक्के निक्के खाल नए नए नाल के तुई सन में महबूबे रत्ती बोल हथ विच पाइनी मुंदरी छल्ले आशिक छल्ले कहार बुलावे लुट्टे पाइया पल्ले पल्ले तीरख ते तीर नैना ते मारे महबूबे रत्ती बोल
1: ऐ महबूबा रत्ती भर तू मेरे साथ बोल मैं दीवाना तेरे पास बड़ी दूर से घर वालों के साथ बहाना करके आया हूं तेरा रंग कितना निखरा हुआ है तूने सर पर फूलदार ओढ़नी ओढ़ रखी है मेरा अंग अंग जख्मी है जरा आकर इनकी मरहम पट्टी कर जा तेरे हाथ मेहंदी के रंग में रंगे हुए हैं तू ताल सुर और जेरो बम के साथ छम छम करती हुई चल रही है ऐ सनम तेरे चेहरे पर नन्हे नन्हे तिल हैं तू अपने नैनों से शिकार कर रही है तेरे हाथों में छल्ले और अंगूठियां हैं तूने हर तरफ लूट मचा रखी है तेजो तर्रार आंखों वाली ऐ महबूबा रत्ती भर तू मेरे साथ बोल।

और फन बेमिसाल है। अभी आपने चार बेत की सफर पर आधारित इस धारावाहिक की आज की चौथी कड़ी सुनी। इस धारावाहिक के लेखक हैं नफीस सिद्दीकी। आज की इस कड़ी में भाग लेने वाले कलाकार थे सैयद मोहम्मद आदिल, मुमताज अजीम बरनी, अख्तर रिजवी, सैयद नवीद कैसर शाह, सुरेंद्र राजेश्वरी, असीम सक्सेना और मनदीप कौर। गायन स्वर शन्नू खां और साथियों के थे। सह प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र राजेश्वरी और असीम सक्सेना। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता हैं मनदीप कौर।

धरोहर के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक और फन बेमिसाल है। आज आपने सुनी कड़ी संख्या 4। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: गीत सुनवाने के लिए ख्वाहिशों का पैगाम,
1: अब आएगा खतों के साथ साथ ईमेल और व्हाट्सएप का भी दामन थाम।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 12:10 पर हम करेंगे कुछ गीत आपके नाम।
1: जी हाँ, गीत आपके नाम।
0: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
1: आप हमें अपनी फरमाइश ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
2: गीत आपके नाम aarrampur@gmail.com। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए, gapkenaamarrampur@gmail.com। गीत आपके नाम सुनिए सोमवार से शनिवार दिन में 12:10 पर आकाशवाणी रामपुर के मीडियम वेव 336.7 मीटर और 102.9 FM पर।

0: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 11:30 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम मन भवन। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गीतकार के लिखे गीत। आज के गीतकार हैं आनंद बख्शी। पहले सुनिए ये संदेश।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: कार्यक्रम मन भवन में अभी आप सुन रहे थे एक ही गीतकार आनंद बख्शी के लिखे गीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजने को है कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों

0: में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक जी एनएच राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 12:05 हुए हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
3: श्रोताओं, आप सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि किरण पुत्री रामकिशोर निवासी ग्राम वथाना हजरत नगर गढ़ी संभल दिनांक 2 जून 2026 से हजरत नगर गढ़ी से लापता हैं। किरण की उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट व रंग गोरा है। जिस किसी व्यक्ति को भी किरण के संबंध में कोई भी जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो, वो कृपया इस पते पर देने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9149282299। मोबाइल संख्या एक बार फिर से सुन लें, 9149282299। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थाना संभल जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि अक्षय गुप्ता पुत्र कमेश चंद्र गुप्ता निवासी मोहल्ला कोट गर्वी थाना संभल जिला संभल दिनांक 6 अगस्त 2024 से सिंचाई विभाग चंदौसी से लापता हैं। अक्षय गुप्ता की उम्र 31 वर्ष, कद 5 फुट 9 इंच व रंग गेहुआ है। जिस किसी व्यक्ति को भी अक्षय गुप्ता के संबंध में कोई भी जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो, वो कृपया इस पते पर देने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संभल जिला संभल। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

फिल्मी गीत सुनना हुआ अब और भी आसान, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के भी संग। हर रोज शामिल हो जाइए अपने नाम और एड्रेस के साथ दिन में 12:10 पर। हम करेंगे गीत आपके नाम।

देश के हो आप किसी भी शहर, गांव या इलाके से, झट उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए अपना नाम और शहर, भेज दीजिए हमारे मेल एड्रेस पर गीत आपके नाम airrampur@gmail.com और व्हाट्सएप वही आपका जाना पहचाना नंबर 9410087876। याद रखिए दिन में 12:10 पर गीत आपके नाम।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दिन के 12:10 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म संगीत का फरमाइशी प्रोग्राम गीत आपके नाम।

अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म उमराव जान में। संगीत था अनु मलिक का और ये गीत था हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। करोला मुरादाबाद से अयूब खान, निरम गुड़िया और शोएब खान। गाटके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे। लोनी से नसीमुल इस्लाम गुन्नौरी और प्रकाशवीर राजपूत। डोंडी लोहारा बालौद से कमलेश जयपुरिया, चंद्रनगर से रजनी सिंह चौहान, पिंकी और दुर्गा कुमारी। और जेल रोड रायगढ़ के हमारे श्रोता हैं लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा। कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन, शब्बीर और आसिफ इकबाल। तिरुपति नगर नांदुरा से संतोष वसाने, उषा, ऋषिकेश, अनिकेत और सागर कटक। दिंदौड़ी नासिक से विशाल गवली, सोनाली, समर्पण और भक्ति। जेल रोड नजीबाबाद से राधिका जाटव और प्रभा रानी जटोलिया। चंद्रनगर दिल्ली के हमारे सुनने वाले हैं मनमोहन चोग, मीठी और खट्टी चोग। डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, राज अंसारी और फातिमा नाज अंसारी। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन। मध्य प्रदेश से तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समरराज, आर्यन, बेबी आरोही, यशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। गंजुनवारा से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख और अमन अफरीदी। और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश के हमारे सुनने वाले हैं ममता, संजय और बेबी किट्टू। कार्यक्रम की अगली पेशकश हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। पाकिस्तान रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगामा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर और हाजी अयूब शेरी। कृष्णा पार्क दिल्ली के हमारे श्रोता हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। इन्हीं के साथ शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। कस्बा उगैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। नई बस्ती गंज टनवारा से फरमाइश आई है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी की। मनकारा मंदिर बीडे कॉलोनी करगेना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा। यहीं से रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, उमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह। जिला मुरादाबाद ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चनाताई गोंडा ने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडा ने। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और इन्हीं के साथ सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। और दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल के साथ गमरिया जमशेदपुर के हमारे

और दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल के साथ गमरिया जमशेदपुर के हमारे श्रोता हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य।

और संगीता पासवान। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभय सिल्लौड़ जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र के हमारे सुनने वाले हैं। अनिल कुमार घोड़ के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़ के। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन के साथ चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। जिला अमरोहा नई बस्ती पति खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया, अलीशा, शकील, फहीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान। सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले और अनिकेत दले। यहीं से ऋषिकेश, जीविका और सानिका। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका और विशाखा। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी, विशाल, शालनी, टिफानशी और इनके परिवार के सभी लोग। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। सदर बाजार कुरावली के हमारे श्रोता हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। और झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया के साथ जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर के हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलदेव बलवीर सिंह। आप सभी के लिए प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म बॉम्बे से, आवाज है चित्रा की।

जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव प्रशांत राजे, संचित प्रथमेश, सर्वद प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप और इन्हीं के साथ कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा।

ग्राम आनंदगांव जिला जालना से। सुनील पाठक, जयपाल यादव, विनोद पुरी, हीरा मणि, रिजवान खान, सोनिया, नितेश कुमार और राहुल खुराना जी हमारे बहुत ही पुराने सुनने वाले हैं और इन्होंने हमें फरमाइश भेजी है अंबिकापुर से। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रिंस एक

अनी गवहणकर, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता निखिल और इनके साथ हैं तन्वी बोट। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू, पप्पू हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव, बंटी और समस्त खुशदिल परिवार। यही गीत हम नाम कर रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं के भी। ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण।

खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और वेदिका सुतार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमिता आहूजा। पिपरिया के हमारे श्रोता हैं कमलकांत गुप्ता और

मधुश्री और एआर रहमान के गए फिल्म युवा के इसी गीत के साथ आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की अपनी रेडियो साथी अपर्णा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लु और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
7: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
9: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
8: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
0: श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। दिन में 1:15 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा धरती गाती है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे लेखराज राठौर और साथियों के स्वर में आल्हा।

शहरी बहनों के लिए उनका कार्यक्रम होगा कुमकुम दिन में 1:30 पर। आज इसमें बहनें सुनेंगी वर्षा सक्सेना की वार्ता, महंगाई के दौर में बचत। इसके अलावा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत आज बहनें सुन सकेंगी एआई के युग में शिक्षकों के

0: इंग्लैंड में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुन सकेंगे शाम 6:30 से खेल की समाप्ति तक। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।
1: प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं। अब इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।
4: लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब करदा 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकर्री लेटर तकसीम करने के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुल्क भर में अपनी पहचान बनाई है। पुलिस ने गुज़िश्ता 9 में गुड गवर्नेंस के हदफ को हासिल करने के लिए जिस तरह काम किया है उसने मॉडल पुलिसिंग की मिसाल कायम की। जनाब योगी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 में रियासत में 2.25 लाख पुलिस एहलकारों को मुकम्मल शफाफियत के साथ और बगैर किसी इम्तियाज के भर्ती किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने पुलिस एहलकारों की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की है और तरबियती सलाहियत में इजाफा किया है। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
5: यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप, हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 में 32,000 से अधिक हुई है। लाखों नौजवानों को यहां नौकरी मिली है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट में फिर से पुनर्जीवित होकर के रोजगार के नए अवसरों को सृजित किया है।
4: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अमन अमान की सूरत हाल, आने वाले त्योहारों, रियासत के 59 अजला में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी। जनाब योगी आदित्यनाथ ने रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में नीट उम्मीदवारों के किरायों में 50% रियायत का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आला ने इम्तिहान से मुतल्लिक अफवाहों, गुमराह किन मालूम या झूठे दावों को फैलाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी का भी हुक्म दिया। वजीर आला ने बैनुल अक्वामी योगा डे की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुहर्रम के हवाले से वजीर आला ने कहा कि जुलूसों में असलहे की नुमाइश और ऊंची आवाज में डीजे म्यूजिक की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अमन और हमाहंगी में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म भी किया। एनटीए के जरिए 21 जून को मुनक़िद होने वाले आइंदा नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान में शफाफियत को बढ़ाने और पेपर लीक होने के इम्कान को खत्म करने के लिए हुकूमत ने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन पैगाम रसाई को 22 जून तक रोक दिया है। एनटीए ने कहा है कि यह पाबंदी नीट के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके फौरन बाद नाफिज होगी। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को यह भी हिदायत दी गई है कि वह 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए पैगाम

0: में तरमीम करने के फीचर को बंद कर दे। रियासत में बढ़ते हुए दर्ज हरारत और गर्मी की लहर के हालात के पेश नजर रियासती हुकूमत ने बुनियादी तालीम काउंसिल से मुंसलिक स्कूलों और तस्लीम शुदा स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 24 जून तक बढ़ा दी है। बुनियादी तालीम और सानवी तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अब गर्मियों की तातीलात हर साल 20 मई से 24 जून तक होगी और 25 जून को बाकायदा तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। ताहम असातजा, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स और गैर तदरीसी अमला 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में मौजूद रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल-ए-ज़िक्र तरक्की की है। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ इस मौजू पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है, तरक्की, एतमाद और अवामी बहबूद के 12 साल। आज इस एपिसोड में हम मुल्की विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए हुकूमती कोशिशों पर बात कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया।
0: आज मुहर्रम महीने की यकुम तारीख है। ये महीना गम के लिए जाना जाता है। इसी महीने की 10 तारीख को इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को करबला में शहीद कर दिया गया था। आज यकुम मुहर्रम के मौके पर लखनऊ में शाही जरी का जुलूस शाम 7 बजे निकाला जाएगा। और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जिसका मकसद वनडे सीरीज में नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल करना है। लखनऊ के एकानत स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल की कयादत में हिंदुस्तान का मुकाबला हशमतुल्ला शाहिदी की अफगानिस्तान टीम से होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दिन के 1:15 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लेखराज राठौर और साथियों के स्वर में आल्हा।

सुनो हमारी बात, अब तुम हालत नामा लिखे को बिकता।

0: बदरिया के उर मामा ये उतारे साई लागो जाए आई होती लड़ाई यहाँ अंबर माई जैसे लड़ाई कोई यहाँ बाज ज्वाला टूटी पर आई धरती पाई संगा है गिराए वीर मालिकान अब तुम हाल सुनौखे तन को दैया चालक हो ना जाए अब तेर सूलल हो सारद नाई लय घोड़ा पाई दो चलाए लिंगा बदल गई रन के बर के बैठो बीच कान पाई जाए जो तेर सूलू कहन माए लागो चिरके लिकर गहो बापार हिसके घोड़ा बोलन लागो ठाकुर सरसा के मलिकान हो आदमी ताशाई निपटाई ओ हम खेलाई जो जय गाय जा जगदम्बा के मोहरा पाई हम साई नाई चलई तलवार मनसा चाहे जो लड़बे की
1: धरती गाती है कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखराज राठौर और साथियों के स्वर में आल्हा।

एक लंग हो बहेरा मालिकान हाँ लड़ांत देख ले ओ मालिके की कैसे लड़ान मनु महान गाय तरसा।

0: ठेरे कौना मारा जा हम।
1: धरती गाती है कार्यक्रम में आज आपने लेखराज राठौर और साथियों के गाए आल्हा सुने। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी बहनों के लिए उनका कार्यक्रम कुमकुम।

0: कुमकुम कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को दीपशिखा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, छोटी छोटी जानकारियां समेटे मनोरंजन के कुछ पल लेकर हाजिर हैं हम आपका भरपूर मनोरंजन करने के लिए। वैसे तो आजकल बहुत से मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, पर कई बार जो आनंद एक बढ़िया चुटकुला सुनकर आता है, वह किसी महंगे एंटरटेनमेंट पार्क में जाकर भी नहीं आता। इसलिए ही तो आकाशवाणी 90 साल से आपका स्वस्थ मनोरंजन करता आ रहा है और आपकी पहली पसंद बना हुआ है। हमारी सदा ये कोशिश रहती है कि छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी खबर आप तक सरल और सटीक रूप से पहुंचा सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दिन की खास बात से। तो आज 17 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। इस दिवस के महत्व के बारे में बात करने से पहले आइए आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है रेखा नाम की एक युवती की। रेखा गांव में रहती थी। उसके गांव में हरे भरे खेत थे। आम का पुराना पेड़ था, जिस पर हर साल सावन में झूला पड़ता था। एक कुआं था, जिसमें हमेशा ठंडा पानी मिलता था। और सुबह सुबह निकल जाओ तो गांव में औरतें खेतों में काम करती मिल जाती थी। रेखा की शादी हो गई और वह मुंबई चली गई। 10 साल बाद जब वह लौटी तो गांव की तस्वीर कुछ ऐसी थी। खेतों की मिट्टी सूखकर चटक गई थी। कुआं सूख चुका था। आम का पेड़ कट गया था। और औरतें 5 बजे उठती जरूर थीं, पर 5 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए। और सखियों, ये सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई है हजारों गांव की। और इसे कहते हैं मरुस्थलीकरण, जब उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाती है। और इसी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए और सूखे की समस्या के प्रति लोगों को वैश्विक रूप से जागरूक करने के लिए हर साल 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में एक प्रस्ताव पारित कर 17 जून को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। ये तारीख संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन को अपनाने की याद दिलाती है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ना है। सखियों, आपको पता है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल लगभग 24 अरब टन से अधिक उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज पृथ्वी का 2/3 भाग मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। जो कोई कार्यवाही नहीं करने पर वर्ष 2050 तक लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। मतलब हमारे देश में जितनी कृषि योग्य भूमि है, लगभग पृथ्वी का उतना हिस्सा बंजर हो जाएगा। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं आदि को बनाए रखने और जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए भूमि का उपजाऊ बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन के लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके कारण और निवारण दोनों पहलुओं को समझते हैं। इस समस्या के मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, पशुपालन की खराब प्रथाएं जैसे कि अत्यधिक चराई, जो भूमि को गंभीर रूप से नष्ट कर देती है और पेड़ पौधों को दोबारा उगने से रोकती है। इसका एक और प्रमुख कारण है खराब कृषि पद्धतियां, जैसे फसलों को ना बदलना। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। सखियों, हमें खुद को समय समय पर ये याद दिलाते रहना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसलिए जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल या यूं कहें कि संसाधनों की बर्बादी हमें बर्बाद कर सकती है। और मरुस्थलीकरण जैसी ज्वलंत समस्या से बचने के लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान जल प्रबंधन पर देना होगा, जैसे कम से कम पानी का उपयोग करना, वर्षा जल का संचयन करना। ठीक उसी तरह जिस तरह राजस्थान के जल सहेली समूह कर रहे हैं, इस समूह से जुड़ी महिलाएं घर भी संभालती हैं, खेतों में काम भी करती हैं और साथ में तालाब बनाती हैं, कुआं साफ करती हैं, जल संरक्षण सीखती और सिखाती हैं और हर दिन जल संरक्षण में अपना योगदान देती हैं। सखियों, हर साल मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस एक विशेष थीम पर आधारित होता है और इस साल की थीम है चारागाह, पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें। उद्देश्य साफ है, दुनिया भर के खुले चरागाहों जो जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक चराई के कारण खतरे में हैं, उन्हें संरक्षित करना और स्थायी प्रबंधन के लिए जागरूकता बढ़ाना। सखियों, आज के इस युग में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। यूं तो कहें तो ये एआई का जमाना है, पर एआई के इस जमाने में बहुत से लोग कठिनाइयों का सामना भी कर रहे हैं। जहां एक ओर बच्चों के लिए एआई ने राह आसान कर दी है, वहीं शिक्षक जो हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं कि अब इस एआई के युग के बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए। तो आइए बात करते हैं एक शिक्षिका से और जानते हैं कि एआई के युग में शिक्षकों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं।
1: नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय चाहूंगी।
2: मेरा नाम प्रगति राठौर है, मैं टीचर हूँ।
1: अच्छा प्रगति जी, स्वागत है कार्यक्रम में। आज एआई का युग है, आप भी मानेंगी, तो इस युग में शिक्षकों के सामने कुछ हमें लगता है कि चुनौतियां हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? पहले तो हमें ये बताइए।
2: जी बिल्कुल।
1: तो पहला प्रश्न आपसे यही है हमारा प्रगति जी, कि आप बताइए कि आप तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है?
2: बच्चों का यही है कि बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है
1: जी।
2: जितने भी उनको साधन मिले हुए हैं, आजकल एआई का बहुत चलन है, तो बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें कोई भी वर्क मिलता है स्कूल से, होमवर्क लिए तो वो एआई के द्वारा करके उसे खत्म कर देते हैं, मतलब अपने वो दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं है।
1: तो उस समय ये समझना कि इसने अपने मन से किया है, एआई का इस्तेमाल किया है, क्या आपके लिए कठिन होता है या पहचान लेती हैं कि ये एआई से किया हुआ है या बच्चे ने खुद किया है, कैसे अंतर बैठाती हैं आप?
2: अंतर ऐसे पता चलता है कि एआई की लैंग्वेज और बच्चे का जो मानसिक स्तर होता है उस लैंग्वेज से हम इजिली अंतर कर पाते हैं कि बच्चे ने अपने दिमाग से कितना लिखा है और एआई से कितना लिखा है
1: जी। तो आपको क्या लगता है कि जो एक शिक्षक की भूमिका है वो कहीं ना कहीं एआई आप कम कर रहा है? बच्चे जो है आपको शिक्षक से ज्यादा एआई पर भरोसा करने लगे हैं, कुछ भी चाहिए होता है तो वो तो तुरंत एआई से पूछ लेते हैं, शिक्षक से नहीं पूछते।
2: आजकल बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत ही आसान हो गई है, उन्हें कोई भी वर्क हम देते हैं तो वो नेट से सर्च करके उसमें कॉपी करके और हमें दिखा देते हैं। लेकिन कॉपी करने से क्या होता है कि बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चा अपना माइंड डेवलप नहीं कर पाता है और आगे चल के यही सारी परेशानियां उसे झेलनी पड़ती हैं सर।
1: तो ऐसे में एक शिक्षक क्या कर सकता है कि जो एआई है उसका सही इस्तेमाल करे, बच्चा गलत उपयोग ना करे?
2: उसके लिए हमें पहले ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो बच्चा हमारे सामने खुद से अपने मतलब दिमाग का इस्तेमाल करके उन एक्टिविटीज को खुद से कर सके, खुद से करने की कोशिश करे। जैसे हम कोई भी अल्फाबेटिकल सीरीज देते हैं उसको हम रीअरेंज करने के लिए देते हैं तो बच्चा खुद से ही रीअरेंज करे उनको कि ए के बाद क्या आना है और बी के बाद क्या आना है, सी के बाद क्या आना है, इस तरह से।
1: कॉपी में तो होमवर्क पूरा है लेकिन बच्चे को आता कुछ नहीं है, तो ये हम सुनिश्चित करने के लिए और क्या क्या आप किन किन तकनीकों का सहायता?
2: हम खेल के माध्यम से ये जांच कर सकते हैं, जैसे पीयर ग्रुप बना लिए हमने जैसे 4 बच्चों का ग्रुप बना लिया हमने, उसमें बच्चे खेल के द्वारा सीख रहे हैं कुछ भी, तो इससे क्या होता है कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है और उनकी नॉलेज जो होती है उसी से बढ़ती है। फिर एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपने तरीके से समझाता है।
1: तो आपको क्या लगता है कि जो एआई है वो बच्चों को लाभ पहुंचा रहा है या उनके लिए हानिकारक है?
2: लाभ भी पहुंचाता है लेकिन जो शुरुआती बच्चों का स्तर है ना उसके लिए वो हानिकारक है, क्योंकि उसमें बच्चा अपना दिमाग नहीं लगा पाता है। पहले हमें बच्चे का मानसिक विकास करना है, उसके बाद वो सोचे कि हम इसको किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं, तब वो एआई का

0: अभिभावक को क्या करना चाहिए?
1: अभिभावकों को चाहिए कि एआई का इस्तेमाल कम से कम ही किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम एआई का इस्तेमाल करने से बच्चों को रोकें, जिससे तो उतने टाइम हमें बच्चे के साथ बैठकर उसकी सहायता करना है, उसकी परेशानियों को समझना है, पहले बच्चे को कहाँ परेशानी आ रही है, और जहाँ तक है हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका उसके दिमाग का इस्तेमाल करवाना है। एआई का यूज हमें तब करवाना है जब बच्चे को कुछ नया सीखना है।
0: प्रगति जी, आपने भी अपने विचार हम तक से साझा करे, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, जीवन में अनेकों चिंताएं हैं, लेकिन कभी कभी एक गीत सब चिंताओं को दूर कर देता है। तो फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत और चिंता मुक्त हो जाते हैं।

0: सखियों, आज के समय में महंगाई भी एक बड़ी समस्या है, एक चुनौती है। और इस दौर में अगर समझदारी से बचत नहीं करी जाए तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो आज हमारे साथ हैं वर्षा सक्सेना, जो एक वार्ता के माध्यम से बता रही हैं महंगाई के दौर में समझदारी से बचत के कुछ तरीके। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: खर्च पर होगी अगर थोड़ी बहुत लगाम, खर्च पर होगी अगर थोड़ी बहुत लगाम, धन की तब होगी बचत, विपदा में आराम। बहनों, पैसों की तो हम सभी को समझ है, तभी तो इतनी कुशलता से घर संभाल रही हैं। पर क्या पैसों के निवेश और बचत को लेकर हमारी समझ इतनी ही अच्छी है या नहीं? तो आज से ही इस मामले में अपनी समझ को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं। यदि हम अपना भविष्य सुख में रखना चाहते हैं, तो हमको बचत और निवेश के मामले में भी योजना बनाकर चलना चाहिए। यह रिटायरमेंट के बाद खुशी जीवन के लिए और आर्थिक सुख से सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है। सबसे पहले अपनी आमदनी और जिम्मेदारियों का लेखा जोखा करें। आर्थिक मामलों की समीक्षा करने के बाद ये जानने की कोशिश करें कि पैसा कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप क्रेडिट कार्ड का खर्च कम कर देती हैं, तो आपकी देनदारी कम हो जाएगी। सेल या एक पर एक फ्री का ऑफर पाकर अनावश्यक खरीदारी ना करें। इसके साथ ही आपकी बचत का एक उद्देश्य भी होना चाहिए, जैसे बच्चों की शिक्षा, अपना घर, कार, ड्रीम हॉलिडे आदि। आम तौर पर होता यह

बताएं और उन्हें फिजूल खर्ची से बचने की सलाह दें। उन्हें आर्थिक मामलों की बुनियादी बातें बताकर हम परिवार के आर्थिक लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। घर का बजट हमेशा आपस में मिलकर बनाएं ताकि घर के सभी सदस्य बचत और खर्च करने में अपनी भागीदारी निभा सकें और जिम्मेदारी बराबर बट जाए। अच्छे स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते, पर यह एक अत्यंत मूल्यवान बचत खाता हो सकता है। इसलिए अपनी अच्छी सेहत के लिए स्वास्थ्य योजना बनाएं।

0: होता है, इसलिए याद से इसका समय से भुगतान करें। हमारी और आपकी यही कोशिश हो कि लेनदारों को नगद भुगतान करना है और इस प्रकार ब्याज की रकम जब हम और या आप काम नहीं कर पाते तो भी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इसलिए कुछ बीमा पॉलिसी में निवेश करें जो कि पॉलिसी की परिपक्वता पर अच्छी रकम मिलने की गारंटी देती हो। घर परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं को कभी कभी मजबूरी में नौकरी छोड़नी भी पड़ती है, पर हमारी जिम्मेदारियां हमारी आर्थिक निर्भरता की राह में रोड़ा नहीं बने, इसके लिए हम घर से भी कुछ काम शुरू कर सकते हैं। घर से काम करने का चलन नया नहीं है, 80 और 90 के दशक की ओर रुख करें तो महिलाएं ट्यूशन, आर्ट और डांस आदि सिखाने का काम घर से करती नजर आती थीं। आज के दौर में तकनीकी के विस्तार ने इसमें भी इजाफा कर दिया है। घर से काम करने के ढेरों विकल्पों में नौकरी तलाशना कठिन नहीं बल्कि थोड़ा सा अलग है। घर से काम करके महिलाएं अपने पैसों को बचाकर रख सकती हैं या अपने सेविंग अकाउंट में सेव कर सकती हैं। ज्यादातर महिलाएं अपने आर्थिक फैसलों के लिए दूसरे पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि उनमें वित्तीय मामलों की जानकारी रखने और खुद फैसले करने को लेकर संकोच रहता है। इसलिए अब सक्षम बने और अधिक से अधिक किताबें और अखबार पढ़ें। पैसों से जुड़े मामलों के बारे में अपने माता पिता, जीवन साथी या फिर वित्तीय सलाहकारों से भी खुलकर बात करें और मन में कोई भी सवाल हो तो पूछने में शर्म ना करें। इससे आप में आर्थिक फैसला खुद लेने का आत्मविश्वास पैदा होगा। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति धन कमाना शुरू करता है तब से ही उसे बचत करने की आदत डाल लेनी चाहिए। इस आदत की वजह से ही जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे बचत भी बढ़ेगी। ये आदत नहीं होगी तो पैसा बचाना असंभव हो जाएगा। तिनका तिनका जोड़कर बनता है घोंसला, तिनका तिनका जोड़कर बनता है घोंसला, पैसा पैसा जोड़कर बनता है भविष्य।
1: सखियों, अभी आपने सुनी एक वार्ता। विषय था महंगाई के दौर में समझदारी से बचत और वार्ताकार थी वर्षा सक्सेना। सखियों, खूबसूरती हम सभी की चाहत होती है, लेकिन इस समय हम बात आपकी खूबसूरती की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके घर की खूबसूरती की। जी हाँ, हम सब चाहते हैं कि हमारा घर खूबसूरत बना रहे, इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। पर आमतौर पर लोगों को लगता है कि घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए घर का बड़ा होना जरूरी है या इसके लिए बहुत महंगे सामान की जरूरत पड़ती है। तो आज हम आपको जो टिप्स बता रहे हैं उनसे आपका छोटा सा प्यारा सा घर भी बहुत सुंदर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं घर की दीवारों के बारे में। छोटे घर में कई लोग डार्क कलर के पेंट करवा लेते हैं, ऐसे में ये रंग कई बार घर को और छोटा दिखाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि दीवारों के लिए हमेशा वाइट, क्रीम, लाइट ग्रे, लाइट ब्लू या पेस्टल कलर्स ही अपनाएं। ये कलर्स लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे कमरा स्पेशियस नज़र आता है। साथ ही छोटे घर में बहुत हैवी या बड़े सोफे या बेड रखने से भी जगह ज़्यादा घिर जाती है, इसलिए कोशिश करें कि लाइट वेट वाला फर्नीचर ही खरीदें। फोल्डिंग या मल्टी यूज फर्नीचर छोटे घरों के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जैसे स्टोरेज वाला बेड है या फोल्ड होने वाली डाइनिंग टेबल। ये आपके घर को बहुत आकर्षक और बड़ा बनाने में मदद करता है। अब अगर आपके घर में स्पेस कम है और आप उसे बड़ा दिखाना चाहती हैं तो उसके लिए आप अपने घर में शीशों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे जब शीशे रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं तो जगह ज़्यादा स्पेशियस नज़र आने लगती है। अगर मिरर की खिड़की के सामने आप एक और शीशा या मिरर लगाएंगी तो कमरे में रोशनी ज़्यादा बनी रहेगी। इसके साथ

कोशिश करें कि आप अपने घर की दीवारों का अच्छे से इस्तेमाल करें। जैसे आप दीवारों पर शेल्फ लगाकर किताबें रख सकती हैं। अगर दीवारों को सजाना है तो छोटे पौधे या डेकोरेशन वाले आइटम भी रख सकती हैं। इससे जमीन पर सामान कम फैला हुआ रहेगा और जगह की बचत हो जाएगी। कई बार ज्यादा सामान भी घर को छोटा दिखाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने घर में सिर्फ उन्हीं चीजों को रखें जिनका इस्तेमाल आप करती हैं। घर से जो भी पुराना या इस्तेमाल नहीं होने वाला सामान है उसे समय समय पर हटाती रहें। अब देखिए, घर जो है वो दीवारों से नहीं पर्दों से भी बनता है, तो घर में जो आप पर्दे डालें वो भी बहुत डार्क कलर के ना लगाएं। कोशिश करें कि पर्दों का जो कलर है वो भी लाइट हो, और पतले कपड़े वाले पर्दे इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप घर में फ्लोरिंग अलग अलग कलर की कराते हैं कि वास्तु के हिसाब से, तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप घर के हर कमरे में अलग अलग रंग करवाएंगी तो घर जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो घर का फ्लोर है वो एक सा रखें, जिससे घर आपका खुला खुला दिखाई देगा। और हाँ, इंडोर प्लांट्स तो खूबसूरती बढ़ा ही देते हैं घर की, तो इसलिए घर को फ्रेश और सुंदर लुक देने के लिए घर में आप छोटे छोटे हैंगिंग प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। और इन्हीं सब टिप्स को फॉलो करके आपका जो घर है वो सुंदर सा घर बड़ा भी दिखाई देगा और मॉडर्न टच भी आ जाएगा इसमें। तो ये थे हमारे आज के कुछ घर से जुड़े हुए टिप्स। और धीरे धीरे हम बढ़ चुके हैं उस मुकाम पे जहाँ पे हमें आपसे कहना होता है अलविदा। कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी सखी दीपशिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी शेरी बहने सुन रही थी कार्यक्रम कुमकुम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: The leaders welcomed the deal between the United States and Iran under U.S. President Donald Trump. The leaders emphasized the importance of safe maritime passage through the Strait of Hormuz and supported steps to strengthen regional security. In another declaration, the G7 pledged to intensify action against drug trafficking, describing it as a growing threat to national security, public health, and economic stability. Partner countries Brazil and South Korea also backed the initiative. They also proposed a G7 Plus ports network to enhance intelligence sharing and disrupt trafficking routes, alongside deeper cooperation with international agencies such as Interpol and UNODC, and a stronger focus on tracing and recovering illicit financial assets. Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Avignon in France for the ongoing G7 summit. However, attention is firmly focused on his bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. This will be the first face-to-face interaction between the two leaders since their last meeting in Washington, D.C. in February 2025. The meeting is being seen as strategically significant as India continues to consolidate its position as a major global power, with New Delhi playing an increasingly active role in shaping responses to global challenges. Our correspondent Ankit Kumar joins us live from Avignon with the latest updates on the G7 developments. Ankit, what regional and global issues are expected to be discussed between both the leaders?
1: Yes, Sagun. The meeting between Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump is really significant in many ways. Although both leaders met yesterday during the group photograph and working session and had a brief interaction also, But all eyes are now formally set on the bilateral meeting. As the two leaders are meeting after a long time, it's naturally drawing widespread attention. Sagun, it is believed that the West Asia crisis could be discussed during their meeting, especially since the U.S. and Iran have recently finalized a deal to end their war and reopen the Strait of Hormuz. So an agreement on this is also expected very soon. So India has always been a strong advocate for peace and dialogue, so comprehensive discussions are expected on the issue. Besides, this progress on the trade deal between the two countries is also expected to be on the agenda. Additionally, India may talk on the issues of energy security as the West Asia crisis and other geopolitical tensions increase the risk of disruption in the energy sector. Therefore, this issue could feature prominently in the talks. Apart from these critical topics, Mr. Modi and Mr. Trump are expected to discuss the entire gamut of bilateral trade between India and U.S. Sagun.
0: All right. Thank you for the updates, Ankit. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Paris this evening as part of his visit to France. Members of the Indian diaspora are eagerly awaiting his arrival and preparations are underway to welcome him. He will participate in Europe's leading technology and innovation events, Viva Tech Summit, tomorrow. More from our correspondent.
2: Tomorrow morning, Prime Minister Modi is scheduled to hold meetings with leading chief executive officers, with discussions expected to continue till afternoon. Later, he will participate in the Viva Tech Summit, one of Europe's leading technology and innovation events, where he is expected to deliver an address. In the evening, the Prime Minister will attend a community event and interact with the members of the Indian diaspora. The program will also feature cultural performances highlighting India's rich heritage and further strengthening the people-to-people ties between India and France. Mahesh Chopra, Akashwani News, Paris, France.
0: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called on Prince Albert II of Monaco. In a social media post, Mr. Goyal said that during their meeting, they discussed expanding the India-Monaco partnership in sectors such as sustainability, the blue economy, innovation and emerging technologies. Defence Minister Rajnath Singh has said that from a policy of zero tolerance against terrorism to decisive actions such as surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor, India has sent a clear message that its sovereignty is non-negotiable. In a social media post, Mr. Singh noted that India has witnessed a historic transformation in its national security architecture under the astute leadership of Prime Minister Narendra Modi. He added that the country's resolve for Atmanirbharta in defence has strengthened indigenous capabilities, modernised armed forces and enhanced preparedness across land, sea, air, cyber and space domains. The Defence Minister underlined that the journey of the last 12 years reflects a stronger, safer, self-reliant and more confident India, ready to safeguard its national interests and emerge as a leading global power. Defence Minister Rajnath Singh has highlighted that India's annual defence production has surged to an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Singh said that this milestone represents an impressive 15.6% growth over the previous fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial year 2020-21, when the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defence production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in financial year 2013-14. Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed a significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defence capabilities across air, land and sea, advanced indigenous technologies and built a stronger foundation for self-reliance and national security. Home Minister Amit Shah has said that over the past 12 years, under the government led by Prime Minister Narendra Modi, India has been rebuilt as a bastion of security that shields the citizens and unleashes destruction upon its enemies. In a social media post, Mr. Shah underlined that whether it is responding to enemies across border with the firepower of surgical strike, airstrike and Operation Sindoor, abrogating Article 370, eradicating Naxalism or fortifying internal security with over 12 accords in the Northeast. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that India has already brought 21.76 million hectares of land under restoration efforts against its target of restoring 26 million hectares by 2030. He said this while addressing the event to commemorate World Day to Combat Desertification and Drought 2026 in New Delhi. Speaking on the theme of this year's observance, Range Lands, Recognize, Respect, Restore, Mr. Yadav cited India's desertification and land degradation atlas and said that around 29% of the country's geographical area is affected by land degradation and desertification.
3: We fully reaffirm our ministry's commitment declared by the Honorable Prime Minister during the COP 2014 Delhi Declaration, where it was pledged that we would work toward the restoration of 26 million hectares of land by the year 2030. Under the Government of India's Green India Mission, we have already carried out work on approximately 1.7 lakh hectares of land. Furthermore, with the support of CAMPA, we have also successfully undertaken forestation effort across 3.2 lakh hectare of land over the past 5 years.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today said India has emerged as a major electronics manufacturing hub and is now the world's sixth largest exporter of electronics. He was speaking after inaugurating the new manufacturing facility of US-based company Jabil at Ranjangaon MIDC in Pune. Mr. Vaishnav said that under the leadership of PM Modi, India has transformed into a global electronics manufacturing destination and is exporting products to markets across the world. Three new ministers were inducted into the Puducherry cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shivkulandhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. Lieutenant Governor K. Kailashnathan administered the oath of office and secrecy. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper. It clarified that there is no leaked paper for the re-exam. It said that fake proof videos showing chats from before the exam are also being circulated. NTA also shared a video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country.
4: See, NTA is committed 100% to ensure that no malpractice will happen. Every question paper has been made in a complete secure manner. We have added layers of security to what is normally done. We have taken every single precaution to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers or translating them or printing them or moving them or storing them till the date of the examination is compromised in any manner.
0: In Manipur, security forces intensified counterinsurgency and law enforcement operations across the state, arresting three militants and destroying 26 illegal bunkers in separate operations, said the officials today. The militants were arrested from different locations in Imphal West District. Police said they were allegedly involved in multiple violent and criminal activities. U.S. President Donald Trump has criticized Israel's military campaign against Hezbollah in Lebanon, saying the conflict has continued for too long and has led to excessive civilian casualties. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70-1 in 8.1 overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Earlier, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. Surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. Three militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया 3 आतंकवादी गिरफ्तार 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
6: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवलील,
5: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
7: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
8: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
5: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
9: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
5: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
10: एनटीए इज कमिटेड।
11: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
10: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
5: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
12: मात्र तीन दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
13: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
5: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में एक विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त। लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
2: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
3: दादी जी,
4: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
3: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
4: हाँ पूछो।
3: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
4: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
3: अच्छा।
4: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
3: अच्छा।
4: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
5: अच्छा।
4: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
3: मंगल पांडे
4: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
5: अच्छा।
4: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी
1: हुँ?
0: लड़ाई में कौन कौन थे?
2: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
3: बड़े बहादुर थे ये।
2: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
3: वो कहाँ के रहने वाले थे?
2: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
3: अच्छा।
2: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
2: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
3: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
2: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
3: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
2: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
2: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
2: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
4: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
3: दादी, फिर क्या हुआ?
2: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
4: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
5: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी,
6: खुद करनी होगी। सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
2: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
2: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
2: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
7: हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता, ऐसा चल नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ
3: उसके बाद क्या हुआ?
2: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
8: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
1: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
8: भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
2: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
8: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो, मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
2: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
9: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
10: मंगल पांडे
11: जिंदाबाद,
10: मंगल पांडे
11: जिंदाबाद,
10: इंकलाब
11: जिंदाबाद,
10: इंकलाब
11: जिंदाबाद।
2: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
12: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
2: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
2: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
9: अरेस्ट करो,
12: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
6: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
2: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: कि ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
3: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
3: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता, जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
3: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
4: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भईल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
3: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
3: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
6: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
7: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
8: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
7: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
8: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
7: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
8: अच्छा माँ।
9: माँ।
8: लो, देवेंद्र भी आ गया।
9: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
7: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
8: ठीक है माँ।
9: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
8: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।

0: Any further damages?
1: Oh, thanks.
2: ये देखो दीदी, ये मारा।
3: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
2: अरे ये मारा।
3: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
2: बंद कर दिया होगा। ये तो देखो।
3: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। दीदी की आवाज कम करो।
2: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
4: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
3: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
5: हमें अंदर आने दो।
3: अरे क्यों?
6: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
3: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
5: लड़की हट।
3: माँ,
5: ये चाकू देख रही है ना?
6: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
3: अरे
6: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
3: माँ,
6: हट रास्ते से।
3: माँ, क्या हुआ? देखो जल्दी।
7: ये क्या है? अरे अरे, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
5: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
3: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
5: ये चाकू देख रही है ना?
3: छोड़ दो।
7: चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
6: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
7: अरे, अरे मेरे बात को छोड़ो,
3: मेरी माँ को छोड़ो।
5: चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
6: अरे सुना सुना, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
7: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
3: देवेंद्र।
8: हाँ दीदी।
3: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
8: अच्छा,
3: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
8: अच्छा।
3: हेलो।
9: हाँ बेटा, बोलो।
3: पापा। पापा।
9: हाँ बोलो बेटा।
3: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
9: कौन घुसाए?
3: माँ को बहुत मार रहे हैं।
9: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
3: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
8: अच्छा।
3: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ
10: बचाओ।
11: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
12: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
13: हाँ वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
4: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
12: देखो ना, सबकी जान
4: बहादुर है मेरी बच्ची।
11: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
14: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
15: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
14: नमस्कार।
16: उमंग उमंग उमंग उमंग।
17: NCERT उमंग। अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम।
0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी तक आप सुन रहे थे हमारी पहली सभा के प्रसारण। दूसरी सभा में शाम 5 बजे इन्हीं मीटरों पर आपसे पुनः भेंट होगी, लेकिन अब से शाम 5 बजे तक एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें यह सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सा नमस्कार।
1: क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि मुस्कुराहट खिल जाएगी सबके चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस उफ, बहुत गर्मी है,
2: इसीलिए हमने धरती ऐसा बोला।
1: धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है,
2: बहुत सारी चीजें हो रही है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो है उस पर चर्चा करेंगे।
1: मंजरी जी, हम कहीं जब बाहर जाते हैं, अपने शहरों से महानगरों से बाहर निकलते हैं, तो हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं, जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम ठहर जाते हैं, लेकिन वहीं पर दूर दूर तक अगर सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो हमें क्या करना चाहिए वहां पर हरियाली रोपने के लिए, कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं रस्तों में तो बीज ढेर सारे ले जाते हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं जगहों पर जहां पर पेड़ पौधे नहीं है। तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं,
2: बिल्कुल कर
1: और
2: सकते हैं।
1: घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं।
2: बिल्कुल। और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है, ऐसा हम लोग सोचें तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय ममता जी वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द। तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं।
1: किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, खासतौर से बच्चों को, बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, ना कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। ये तो प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट है। तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं,
2: और माएं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करती हैं,
1: है ना? और उसका असर क्या होता है ये भी बताइए। कहीं कई कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, है ना।
2: और डायरी लिखने की आदत बड़ी खूबसूरत सी आदत होती है, तो आप लोग कितना लिखते हैं वो भी बताइए।
1: पूरा मन उड़ेल देते हैं
2: जी,
1: क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर, वो सारा उड़ेल देना है, मन में जो सागर भरा हुआ जी, वो गागर में उड़ेल

0: देना है। तो
1: बिल्कुल
0: डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं।
1: जी
0: कई बार हम डायरी में वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे।
1: जी
0: कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं।
1: बिल्कुल
0: अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है
1: बिल्कुल
0: और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितना कितनी दोस्ती कराई है ये भी बताएं।
1: उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी हो गई है ममता जी
0: ठीक है, तो मोबाइल की
1: उनके
0: डायरी में एक
1: जी।
0: नोटपैड बनाएं और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: वो भी एक जरिया है, क्योंकि आप
1: लेकिन
0: जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पकड़ा सकते।
1: हाँ ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए अगली बात हम करने वाले हैं साड़ियों का संसार में। आज मैंने बांधनी साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफी बनाई जाती, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले, चर्चा करने से पहले
0: गीत सुनते हैं और श्रोताओं को, क्योंकि इंतजार होगा गीत का और हमें इंतजार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा, कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत चर्चित हो जाती है, किताब की शक्ल में आती है डायरी,
1: जी
0: तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें जो डायरी की शक्ल में लिखी गई है। फिलहाल ये गाना

0: पवन दीवानी न माने डॉक्टर विद्या फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत था। भाई मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजरी जी,
1: देखिए उसकी
0: श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई है पता है।
1: ममता जी देखिए उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उनके विषय जो संदेश लिखते हैं उनको भी हमें वहां से निकाल के लाना है अपने पास और आपको भी देना है, तो उधर उलझे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग लगा हुआ है कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में। तो देखिए धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो हरियाली ही पेड़ पौधे ही लगाते हैं, और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी औषधियां फल फूल सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी।
0: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत अब आज भी लहलहाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है, जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, बची नहीं रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि इसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसलिए एक मुहिम चलाएगी, और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में से ये दिवस किया था, और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहां पर सूखा है, तो वहां पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें, और साथ में वहां पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहां सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं जहां पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं।
1: बिल्कुल। और ममता जी, जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है उससे ज्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना, लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर, फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं हैं, बावड़ी, इस तरह की चीजों को हमें बनाना चाहिए।
0: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ों पर, जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीजर चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया, तो वहां हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियां या ड्रम, तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज्यादा होती है और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है। तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से, तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं और पानी एकदम स्वच्छ होता है, क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती है, जो एकदम जहां पर
1: बिल्कुल
0: लोगों की पहुंच नहीं है वहां तो बिल्कुल नहीं कूड़ा कचरा दिखाई देता है।
1: बिल्कुल
0: तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो
1: बिल्कुल
0: आंगन
1: नहीं।
0: वाले घर
1: हाँ
0: हैं
1: ममता
0: वहां
1: जी,
0: हम कर सकते हैं।
1: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी बाल्टी वगैरह, रख दी और बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से, ढलान से, तो वहां इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने, फर्श धोने,
0: हाँ,
1: इन सब के काम बहुत
0: बचपन
1: आता
0: में तो
1: था।
0: खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया जाता
1: हाँ
0: था, छोटे
1: बिल्कुल
0: छोटे बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, और ये कहा जाता था कि
1: बिल्कुल
0: बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर
1: जी,
0: गया।
1: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे
0: हाँ,
1: तो उसको
0: तो
1: इकट्ठा कर
0: ये
1: लेते
0: जो
1: थे।
0: खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना
1: जी
0: चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है, तो जब धरती जहां बंजर होती है, धरती जहां जहां पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहां उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
1: बिल्कुल
0: हरियाली की और पानी की।
1: बिल्कुल, और इन सब चीजों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत
0: अभी
1: जिम्मेदार
0: अभी
1: हैं।
0: आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना
1: जी जी
0: मंजरी
1: जी
0: जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश में,
1: जी
0: हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहां पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है
1: होता ही
0: अमूमन,
1: होता ही
0: तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं। और ये कॉल एक महिला का था,
1: जी,
0: तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी
1: बहुत
0: बात है,
1: अच्छी बात है सर
0: और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें गाना सुनवा दे अपने
1: जी।
0: श्रोताओं को।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक
1: जी
0: पोशाक है,
1: बिल्कुल,
0: और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है,
1: बिल्कुल
0: साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप
1: बिल्कुल
0: क्या
1: खुल
0: करती
1: जाता
0: हैं?
1: है, मेरा भी खुल जाता है। और उसमें देखते हैं तरह तरह की साड़ियां देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मजा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी, और क्या कहते हैं, हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियां हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना।
0: सही बात है।
1: तो जो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है, इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियाँ ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर, और वहाँ पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वही राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतने सुंदर सुंदर साड़ियाँ टंगी रहती है, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक के से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंगकार जो है बेहद आकर्षक डिजाइन तैयार करते हैं, और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिजाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
0: मतलब
1: तो
0: काफी मेहनत लगती है,
1: मेहनत
0: और समय
1: लगती
0: भी
1: है,
0: लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है, और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिजाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियां बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जॉर्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोम्बी, पटोरी, घरचोला और चंद्रो खानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है, हर तरीके के, उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा, और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बनाई बना दी जाती है इन साड़ियों को।
0: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि भरे चटक लाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान
1: जी
0: है राजस्थानी बांधनी की।
1: बिल्कुल
0: और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि
1: बिल्कुल
0: क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियां आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं, और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है, और कुछ
1: बिल्कुल
0: फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है।
1: जी। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है, और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत टाई डाई वस्त्र कलाओं में से एक है और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है। और बिंदियाँ बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्यौहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है।
0: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है।
1: बिल्कुल, साज श्रृंगार तो बहुत जरूरी है
0: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो सुनते हैं ये गाना, हरे कांच की चूड़ियां, फिल्म का नाम है

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम और बात अब डायरी की चल पड़ी है।
5: बिल्कुल,
0: डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी पढ़ेगी तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी और क्या माहौल था घर का। माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
5: बिल्कुल,
0: है ना।
5: बिल्कुल, डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब, हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता है।
0: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
5: बिल्कुल,
0: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती है। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। भाई क्यों नहीं लिखती है?
5: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई थी।
0: अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती है?
5: लिखना चाहिए,
0: लिखना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं बाहर है, रस्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में है, विमान में है या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहां भी आप डायरी लिख सकते हैं, बोल के टाइप करने की भी सुविधा है तो।
5: जी बिल्कुल। अरे हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटा पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी, कि लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं, बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो। लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। वाकई सही बात आपने कहा है और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है, इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिख।
0: कहा जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
5: बहुत
0: है,
5: ईमानदारी से,
0: और उसमें डायरी में जो भी बात लिखे सच लिखे, क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता,
5: नहीं होता।
0: सच को सच की तरह लिखें, झूठ को झूठ लिखें कि ये गलत था,
5: तभी तो उस समय का पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या बिताया।
0: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था, एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई, मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है, कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं
5: उसका
0: तो जो हौले हौले जज्बात निखर के आते हैं, कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है। लेकिन न से तो बेहतर है कुछ, तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं।
5: बिल्कुल।
0: और जी डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
5: बिल्कुल। और देखिए हमारी साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना मैंने 8th क्लास से शुरू किया था, मुझे क्लास और घर की दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है।
0: भाई अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए, हमें आपको भी लिखनी चाहिए।
5: लिखते
0: फिलहाल गाना सुनना चाहिए।

0: लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और
1: बिल्कुल
0: आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के
1: जी
0: लिए शुरुआत की है मनचाहे गीत की।
1: बिल्कुल
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई, और एक दो नहीं, बहुत ढेर सारी
1: क्या
0: चिट्ठियां
1: बात
0: आनी शुरू हो
1: है
0: गई हैं। और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आंख
1: बिल्कुल
0: मूंद के उठाने वाली नौबत
1: टॉस
0: आ गई।
1: करना
0: तो
1: पड़ेगा
0: हमें
1: जी
0: चिट्ठियों से प्यार होता है,
1: जी
0: इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है, जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारी मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है, और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं। लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं, तो वो जब उजागर होता है तो
1: देखिए
0: फिर वो
1: ममता
0: दोस्त नहीं रह जाती है
1: जी,
0: डायरी
1: देखिए ममता जी, एक
0: फिर तो
1: ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था भाई, लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
0: आपने लिखी कभी?
1: तो ये बात तो कही
0: बताइए
1: नहीं
0: ना
1: जा सकती है, क्योंकि ये बात को रहने
0: उजागर,
1: देते
0: राज को
1: हैं
0: राज रहने दो,
1: राज को
0: बिल्कुल
1: राज ही
0: बिल्कुल।
1: रहने देते हैं।
0: तो
1: लेकिन हम वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी, और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
0: वो
1: बातें
0: अभी
1: लिखी
0: भी
1: जाती
0: आती
1: थी।
0: है,
1: हाँ अभी
0: बस
1: भी
0: शौक
1: आती
0: होना
1: है
0: चाहिए डायरी खरीदने
1: शौक
0: का,
1: होना चाहिए,
0: डायरी
1: अब
0: लिखने
1: तो
0: का, और
1: खरीदनी
0: डायरी
1: पड़ेगी
0: डायरी तोहफे में देने का
1: जी। तो
0: भी
1: अब
0: एक अलग मजा है
1: सोचते हैं यही हम आपको दे देते हैं, आप मुझे दे दो फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है
0: बिल्कुल।
1: ना। तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है, कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला, रसोई मैनेजमेंट 6 लोग, कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन जरूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफर के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसी कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और
1: क्या
0: ये जो
1: बात है
0: लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर जो घर की जरूरी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं
1: बिल्कुल
0: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीजें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: कई बार अनावश्यक चीजें आ जाती हैं।
1: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुजुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, तो वो
0: बिल्कुल
1: एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज को माइनस करते हैं, तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, और गृहस्थी में तो बहुत जरूरी होता है
0: पढ़ाई की बातें और
1: जी
0: गानों की बातें, संगीत की बातें, और तो और संगीत सरिता जो
1: जी
0: प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती,
1: जी
0: जानकारियां, वो डायरी में नोट करते थे
1: क्या बात है
0: और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
1: क्या बहुत
0: तो
1: अच्छी अच्छी बात
0: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
1: बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताजा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
0: और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए ये गाना।

0: को गहराई से समझना सिखा गई है।
1: मंजरी जी, एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
0: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था
1: प्रोत्साहन,
0: प्रोत्साहन,
1: डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन था आज।
0: प्रोत्साहन भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए, तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
1: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन, हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी
0: जी
1: है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहेज लेती हूँ। ये तो दोनों
0: दोनों
1: सकारात्मक
0: चीजें
1: नकारात्मक दो
0: जी
1: पहलू होते हैं, तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो वो तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं, देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं, अगली बार हम और अच्छा करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज हर के साथ होती है।
1: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है, ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं
0: जी
1: कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज बताने के, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
1: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की
0: जी
1: व्यवस्था की जाती है ना, कि
0: बच्चों का
1: आप
0: उत्साह बढ़ जाता है उस तरह
1: जी।
0: से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना, जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है, इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।

और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोलें बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट
1: जी। हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: विद कॉमेंट्री पेश करते
2: हाँ,
1: हैं।
2: हाँ,
1: तो ये जो उसमें आप कॉमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कॉमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल हाँ।
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
2: पॉपुलर हुआ करता था उस समय। और चूंकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, तो कमेंट्री उस पे आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था वो?
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: हाँ, तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुली वाला फिल्म का गाना है, प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
2: बिल्कुल।
1: ऐ मेरे प्यारे वतन।

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, कहाँ मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे। और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है। बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बस सही।
1: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होते हैं।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर
1: हाँ,
0: बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं
1: वो
0: पूछता।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं है, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए। जो इतना बड़ा सवाल है,
0: जी जी
1: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से
0: रास्ते में है अभी तो।
1: कम। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली है, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी
0: पढ़ाई
1: नहीं।
0: में थे कैसे आप?
1: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में।
0: मन कहीं और लगता था।
1: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
0: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब तो अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
1: जहां मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट,
0: जी
1: वो खेत खलियान वहां बहुत है। हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप
0: जी
1: वहां अगर गए हों कभी या जाने का मौका
0: गया
1: मिले
0: हूं
1: आपको,
0: मैं।
1: तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहां, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन, और पता नहीं क्या क्या
0: जी
1: मतलब बाग बगीचे वहां पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा। मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
0: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है, वो
1: हाँ वो है।
0: अक्कड़पन, वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
1: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना कि सच को हम उसका सामना करने वाला कतराते हैं, कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी। मुझे अच्छा लगता है, जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे पे, कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
0: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूं कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है
1: हाँ, चूंकि
0: आपको।
1: बात अब चल रही है पलों की,
0: हाँ
1: तो एक गाना तो बन गया,
0: कौन सा है?
1: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत गाना है, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्माया गया है।
1: फिल्मों के बगैर मुझे
0: हाँ
1: नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत है।
0: आइए सुनते हैं।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राज जी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं। ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे, उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं। इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और क्योंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं। सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया है यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इंस्पेक्टर जहां यहां लिखा है, ये सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने वाले, यार अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। और अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था यार मैं क्यों
0: कहां फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और

0: वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर एक डेढ़ महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कह रहे विजय यार क्या बात है यार। मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है। वहां से वो कब पैदा हो गया उस रस की वजह से
1: कुछ कुछ होने लगा,
0: कुछ होना, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी। मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहाँ जा रहे हो यार खेलते ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था। हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, मैंने बहुत सारी सब्जियां हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में। वहीं पे कुआं था, वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
1: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
0: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

0: कभी तो हंसाए।
1: ब्रज भाई अब कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
2: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेट्री का। जब वो बात वाक्या हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चारा था कि आप बम्बई चले आए। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे और जाएं कहाँ, सड़क पर तो कोई घूमता नहीं है। तो पड़े रहे मतलब घर में और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे गए और एड्रेस जाके वहाँ फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज़ है, कहाँ पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीज़ें करते ज़रूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में हर चीज़ किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
1: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
2: बिल्कुल मानता हूँ। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो

0: हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीजें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
1: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
2: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा। वहां कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको, या कहीं से आपको जानकारी मिली?
0: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं, और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं, उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था मुझे, तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन है, ऐसा कुछ मेरे ये सब मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने कहा यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका, जो रेपर्टरी चीफ हुआ करते थे उन दोनों, बड़े प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपेट्री में कि सुनो, रेपेट्री

और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रिपेट्री में कि सुनो रिपेट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपये मिलेंगे। और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया मैंने मेरे कानों ने शटर डाउन कर

0: तो पहले वो लोग 1 साल के लेते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पे। तो 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया तो मैंने फट से, फिर तनख्वाह हो गई 4,000, तो 12 चौक 48, मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया। मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया, और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इंपॉर्टेंट काम रिपेटरी ने मुझे दिया, और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: M.K. रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, D.R. अंकुर साहब, बजाज साहब, B.M. शाह, मोहन उप्रेती साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है।
1: विजय भाई, अभी मौका है एक और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे।
0: अभी किशोर साहब का गाना है, शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी है, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोर दा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे,
1: बिल्कुल,
0: उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बातें हैं। बचपन में मैं काफ़ी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज़्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे
1: जब थिएटर कर रहा

0: नौकर थे, और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की, जिसमें एक दो तीन बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हों, ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
1: अभी भी
0: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास। ये कर दूंगा मैं, जो पैसे के बल पे जो चीज़ें होती हैं वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफ़ी है। तो कई बार देने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
1: विजय भाई, वापस मुंबई हम लौटते हैं।
0: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि। ज़्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मॉनसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब, मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई। एक प्ले वो देखने आए थे, अग्नि और बरखा एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था,
1: जी
0: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतज़ार कर रहे हैं मिलने के लिए। और वो हमारी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं। दूरी नहीं थी कोई,
1: क्या बात
0: मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहा हूँ। जो मैंने शेयर की पिछले समय में, एक
1: जी।
0: फिल्म में दोबारा हमको मौका मिला काम करने का, 12 आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया। मॉनसून वेडिंग और 12 आने के बीच में आठ, ऑलमोस्ट 8-9 साल का अंतर है। इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना फोन पे ना मुलाकात हुई, और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
1: आपसे दूर हूं या
0: आपसे
1: आप मुझसे
0: मिला
1: दूर
0: नहीं।
1: हूं।
0: और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि, हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल
1: अच्छा
0: में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहाँ से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आएँ तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है,
1: कहाँ दिया था आपने? बॉम्बे में?
0: बॉम्बे में।
1: मैं,
0: तो
1: मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो। हम
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब
1: अच्छा
0: मुझे फोन आया था, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी उसके लिए मैं वहां पे था, और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट डे मैं आया, तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहां हूं और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था, और होटल में मुलाकात होनी थी। तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं, मतलब किससे यार कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी, ओ या, या, या तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता हो गया मैं आने वाला हूं, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए, बुलाया नहीं किसी ने। तो काफी समय बीत गया, मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं। नहीं मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग, कि एनीवे तो थक गई थी काफ़ी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी, चाय पियेंगे? मैंने हाँ हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में, उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा, वही जो जिस करेक्टर को आपने
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: वही
0: बिल्कुल,
1: करवाया उसी के
0: स्क्रिप्ट उनके
1: डायलॉग?
0: पास थी और मैंने कर दिया। बैठे रहे, बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये
0: हाँ ये सब बताया, तो मैंने कर दिया जैसा।

0: तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती
1: जी
0: हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे ही एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है।

0: जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब और करके कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको कि नहीं नहीं नहीं दैट आई नो बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में। और
1: उसी में आपने पहली बार कैमरा फिल्म कैमरा फेस किया?
0: नहीं उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था, उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका था। भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी।
1: भोपाल एक्सप्रेस,
0: हाँ ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई कब क्या हो गया पता ही नहीं चला। और
1: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया दुबे जी वाला।
0: हाँ वो अच्छी बन पड़ी और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें दो फिल्मों को बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफी घुमा हूं जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी वो काफी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं?
0: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना है?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे जैसा व्यक्ति तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक।
0: क्या बात
1: कही तो बजाय।

0: मानसून वेडिंग के बाद क्या चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूं, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूं, उनके टाइटल जो है पढ़ना बड़ा ऑफ बीट सी है सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहां पे मैं कुछ कह सकूं।
0: ये तो आप मानिएगा कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हट करके बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे
1: बिल्कुल
0: सामने।
1: बिल्कुल।
0: इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी जी
1: उसकी,
0: जी
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ।
0: कहां
1: इंग्लिश
0: पर?
1: फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी
0: अच्छा,
1: डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ, दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम
1: फर्क तो
0: किया
1: है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पे
0: जी।
1: काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें। वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इंप्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ। कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहां पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है। कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
0: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रांग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना। कुछ मुद्दों को लेके इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है। उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज है जो रोकती है आप?
0: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है।

0: भी
1: हाँ
0: शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलिस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है। टिकटें महंगी हुई हैं बावजूद इसके
1: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि
0: लोग
1: जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग। बड़ा फिल्में उठाए हैं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
0: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
1: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी, जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता, तो इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज वेस्ट, जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली दो तीन फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं
0: जी
1: भूल जाता हूँ करने के बाद चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ, और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
0: शुभकामनाएं देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें। और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत आपका।
0: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग पी के ए नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने
2: शुभ संध्या मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई से कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी रामपुर से हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं।

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम स्टूडियो में लेकर हाजिर हैं मोनिका और उनकी साथी मेघा।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम युववाणी में। आज मैं हूं आपकी रेडियो पार्टनर मेघा सक्सेना।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी मोनिका कुमार। तो करिए स्वीकार हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूं अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे आज के सवाल का। हमारा आज का सवाल है, भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा की गई थी?
1: दोस्तों, सवाल का पुनः सुन लिए आपको। भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना है आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज की अपलोडेड पोस्ट को कमेंट सेक्शन में देना होगा इस सवाल का सही जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे कार्यक्रम के एंड में। मेघा, अगर एक दिन हम सुबह उठें और पता चले कि खेतों में हरियाली की जगह सिर्फ सूखा और बंजर जमीन बची है, नदियों का पानी कम हो गया है और पीने के पानी की लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं, तो क्या होगा?
0: सच कहूं मोनिका, यह सोचकर ही डर लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया के कई हिस्सों में लोग ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल मेघा, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये मरुस्थलीकरण आखिर होता क्या है।
0: जब उपजाऊ भूमि धीरे धीरे अपनी उर्वरता खोकर बंजर बनने लगती है, तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसका मुख्य कारण है वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
1: मतलब समस्या केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी खेती, अर्थव्यवस्था, जीवन शैली को भी प्रभावित करती है।
0: बिल्कुल सही कहा मोनिका, जब भूमि की गुणवत्ता घटती है तो फसल उत्पादन कम हो जाता है, इससे खाद्यान्न संकट और किसानों की परेशानियां बढ़ जाती हैं।
1: और सूखा भी इसी से जुड़ी एक चुनौती है। आखिर सूखा इतना गंभीर क्यों माना जाता है?
0: क्योंकि सूखे के कारण जल स्रोत सूखने लगते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, पशुओं को पानी और चारे की कमी हो जाती है और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
1: यानी मेघा, ये सिर्फ किसी एक देश या क्षेत्र का समस्या नहीं, जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया इस चुनौती का सामना कर रही है।
0: सही कहा मोनिका, इसलिए इस दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और भूमि एवं जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना है।
1: मेघा, क्या आम लोग इस दिशा में कुछ कर सकते हैं?
0: बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल कर सकते हैं। हर व्यक्ति पानी बचाकर, वर्षा जल संचयन अपनाकर, पेड़ लगाकर और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करके बड़ा योगदान दे सकते हैं।
1: यानी बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घर और आसपास के वातावरण से की जा सकती है।
0: जी हाँ, छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम लाते हैं। अगर हम आज जागरूक होंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और हरी धरती दे सकेंगे।
1: तो आइए इस मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि जल और भूमि संरक्षण को अपनी आदत बनाएंगे।
0: क्योंकि भूमि बचेगी तो जीवन बचेगा, पानी बचेगा तो भविष्य बचेगा।
1: पर्यावरण की रक्षा करें, पानी बचाएं और धरती को हरा भरा बनाएं।
0: साथियों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।
2: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने दैनिक कार्यक्रम युववाणी में, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों कुछ खास है आज इस सेगमेंट में। आज हम बात करने जा रहे हैं राजमाता जीजाबाई की।
1: राजमाता जीजाबाई मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी। उनका जन्म 12 जनवरी 1598 को महाराष्ट्र के बूलाढाड़ा जिले के सिंदखेड़ में हुआ था। उनके पिता लखूजी जाधव एक प्रतिष्ठित सरदार थे। जीजाबाई का विवाह शाहजी भोसले से हुआ था।
0: दोस्तों जीजाबाई ने शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को धर्म, न्याय, साहस, देशभक्ति और प्रजा के प्रति कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। वह रामायण, महाभारत और अन्य प्रेरणादायक कथाएं सुनाकर उनमें स्वराज्य की भावना जगाई थी।
1: जब शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना का संकल्प लिया तब जीजाबाई ने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन किया। उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ निश्चय के कारण उन्हें राजमाता के सम्मान से जाना जाता है।
0: 17 जून 1674 को उनका निधन हुआ। भारतीय इतिहास में जीजाबाई को एक आदर्श माता, कुशल प्रशासक और राष्ट्रीय प्रेरणा के स्रोत के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन त्याग, साहस और मातृशक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है।
1: साथियों कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं उत्कलमणि गोपबंधु दास की।
0: दोस्तों उत्कलमणि गोपबंधु दास ओडिशा के महान स्वतंत्र सेनानी और समाज सुधारक, पत्रकार, कवि और शिक्षकविद थे। उन्हें उत्कलमणि की उपाधि दी गई थी जिसका अर्थ है उड़ीसा का रत्न। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1877 को उड़ीसा के पुरी जिले के सुवांडो गांव में हुआ था।
1: गोपबंधु दास ने अपने जीवन समाज सेवा और देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए 1909 में सत्यवादी वन विश्वविद्यालय की स्थापना की जहाँ छात्रों को नैतिकता, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सेवा की शिक्षा दी जाती थी। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
0: वे एक प्रसिद्ध लेखक और कवि भी थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में वंदीरा आत्मकथा, धर्मपद और अवकाश चिंता शामिल हैं। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा गरीबों, अनाथों और आपदाओं पीड़ितों की सहायता के लिए निरंतर कार्य किए।
1: 17 जून 1928 को उनका निधन हो गया लेकिन उनकी सेवाओं और आदर्शों को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। गोपबंधु दास का जीवन त्याग, सेवा, राष्ट्र प्रेम और मानवता की प्रेरणादायक मिसाल है।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।
2: दोस्तों आप सुन रहे थे सेगमेंट कुछ खास है आज, आइए आपको सुनवाते एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट व्यक्तित्व विकास की ओर।
1: दोस्तों, चलते हैं हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के सब सेगमेंट गुण की ओर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्वावलंबन की।
2: दोस्तों, स्वावलंबन यानी अपनी मेहनत, अपनी योग्यता और अपने आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ना। ये सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं, बल्कि अपने फैसले खुद लेना, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हर परिस्थिति का डटकर सामना करने की क्षमता भी है।
1: साथियों, आज के समय में स्वावलंबन की सबसे बड़ी पहचान है स्किल डेवलपमेंट, चाहे डिजिटल स्किल्स हो, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई, फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन या कोई तकनीकी हुनर। हर नई स्किल हमें आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जाती है।
2: दोस्तों, याद रखिए, सफलता किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने प्रयासों से मिलती है। जब हम अपने हुनर को पहचानते हैं और उसे लगातार निखारते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। असफलताएं भी हमें रोकती नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई सपना है तो आज ही उसकी ओर पहला कदम बढ़ाइए। अपने हुनर पर भरोसा रखिए, नई चीजें सीखिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाइए, क्योंकि स्वावलंबन व्यक्ति न केवल भविष्य को संवारता है बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1: साथियों, दूसरों के सहारे का इंतजार मत कीजिए, अपनी मेहनत को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाइए, क्योंकि आत्मविश्वास और स्वावलंबन ही सफलता की सबसे मजबूत नींव है।
0: साथियों, अभी आपने सुना सब सेगमेंट गुण का स्वावलंबन। अब चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट कौशल विकास की ओर।
1: दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट कौशल विकास की ओर, जिसमें आज हम जानेंगे यूआई डिजाइनर के बारे में।
2: दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट खोलते हैं तो उसका सुंदर डिजाइन, रंगों का मेल, आसान मेन्यू, आकर्षक बटन और साफ सुथरे लेआउट कौन तैयार करता है? इसका जवाब है यूआई डिजाइनर।
1: यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस, यानी वह हिस्सा जिससे उपयोगकर्ता सीधे जुड़ता है। एक यूआई डिजाइनर का काम होता है किसी ऐप, वेबसाइट या डिजिटल प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन करना कि वह देखने में आकर्षक होने के साथ साथ इस्तेमाल करने में भी आसान हो। उसका लक्ष्य होता है कि उपयोगकर्ता बिना किसी उलझन के अपनी जरूरत का काम आसानी से पूरा कर सके।
2: दोस्तों अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, रंगों की समझ, टाइपोग्राफी, लेआउट डिजाइन, समस्या समाधान की क्षमता और तकनीक में रुचि होना फायदेमंद रहेगा।
1: इसके साथ ही फिग्मा, एडोब एक्सडी, स्केच, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे डिजाइन टूल सीखने भी बहुत उपयोगी होते हैं। आज कई ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स इन कौशलों को सिखाने का अवसर प्रदान करते हैं।
2: एक बात और दोस्तों, अक्सर लोग यूआई डिजाइनर और यूएक्स डिजाइनर को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों की भूमिका अलग होती है। यूएक्स डिजाइनर ये तय करता है कि किसी ऐप या वेबसाइट पर उपयोगकर्ता अनुभव कैसा होगा, जबकि यूआई डिजाइनर उस अनुभव को सुंदर, आकर्षक और उपयोग में आसान डिजाइन के रूप में प्रस्तुत करता है। दोनों मिलकर बेहतरीन डिजिटल प्रोडक्ट तैयार करते हैं।
1: इस क्षेत्र में आप आईटी कंपनियां, स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स कंपनियां, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों, गेमिंग इंडस्ट्री और फ्रीलांसिंग के माध्यम से भी काम कर सकते हैं। अनुभव और कौशल बढ़ाने के साथ करियर में आगे बढ़ने के कई अवसर मिलते हैं।
2: दोस्तों रचनात्मक सोच जब तकनीक से मिलती है तब जन्म लेता है एक बेहतरीन डिजाइन, और एक अच्छा डिजाइन केवल सुंदर नहीं दिखता बल्कि लोगों का काम भी आसान बनाता है।
0: दोस्तों कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे की और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: साथियों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान की ओर, जिसमें हम जानेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी के बारे में।
1: दोस्तों, अब चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान की ओर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी की।
0: साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विश्वविद्यालय की जहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि आसमान को छूने के सपनों को भी पंख मिलते हैं। आज का विषय है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय।
1: दोस्तों, जब भी हम विमान को आसमान में उड़ता देखते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान पायलट की ओर जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विमानन क्षेत्र को सफल बनाने के पीछे कितने विशेषज्ञों की मेहनत होती है? पायलट, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट विशेषज्ञ, एयरपोर्ट ऑपरेशन प्रोफेशनल, सुरक्षा अधिकारी, इंजीनियर, एविएशन मैनेजर और कई अन्य प्रशिक्षित लोग मिलकर इस पूरे क्षेत्र को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इन्हीं विशेषज्ञों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय।
0: दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित यह विश्वविद्यालय भारत का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना विशेष रूप से विमानन शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 2013 में संसद की एक अधिनियम के माध्यम से हुई। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं बल्कि भारतीय और वैश्विक विमानन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है।
1: यहाँ विद्यार्थियों को एविएशन मैनेजमेंट, एयरपोर्ट ऑपरेशन, एयर कार्गो, एयर ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा प्रबंधन, अनुसंधान और विमानन से जुड़े अन्य विषयों का आधुनिक और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। पढ़ाई के दौरान केवल कक्षा तक सीमित शिक्षा नहीं बल्कि उद्योग से जुड़े अनुभव पर योजनाएं, विशेष व्याख्यान और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जाता है।
0: आज के दौर में स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यही कारण है कि यह विश्वविद्यालय आधुनिक तकनीक, उद्योग की जरूरतों और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देता है, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करने के बाद आत्मविश्वास के साथ अपने करियर की शुरुआत कर सके।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारा सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान। आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट द वेलनेस जर्नी की ओर।
1: दोस्तों, सेगमेंट द वेलनेस जर्नी में आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में।
2: दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में जो लाखों लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करती है, लेकिन अक्सर लोग इसे सिर्फ साधारण सिरदर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की।
1: दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सिर में तेज धड़कन जैसा दर्द महसूस हुआ हो, तेज रोशनी आंखों में चुभने लगे, हल्की सी आवाज भी परेशान करने लगे, या फिर मतली और उल्टी जैसे महसूस हो? अगर ऐसा बार बार होता है तो ये माइग्रेन हो सकता है।
2: साथियों, माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है। इसमें सिर के एक हिस्से या कभी कभी पूरे सिर में धड़कन जैसा तेज दर्द होता है। यह दर्द कुछ घंटों से लेकर 2-3 दिनों तक भी रह सकता है। माइग्रेन का असर हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को दर्द शुरू होने से पहले धुंधला दिखाई देता है, चमकती रोशनी दिखना, हाथ पैरों में झुनझुनी महसूस होना या बोलने में थोड़ी कठिनाई जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसे ऑरा कहा जाता है। हालांकि हर माइग्रेन रोगी में ये नहीं होता।
1: दोस्तों, आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में तनाव और अनियमित दिनचर्या आम हो गई है। देर रात तक मोबाइल चलाना, घंटों लैपटॉप पर काम करना, समय पर भोजन ना करना और आराम की कमी, ये सभी आदतें माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए अपने शरीर के संकेत को समझना बहुत जरूरी है।
2: दोस्तों, अब बात करते हैं बचाव की। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को नियमित बनाइए। रोज एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश कीजिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन करें, भोजन कभी ना छोड़ें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। रोजाना हल्का व्यायाम, योग और प्राणायाम तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं।
1: दोस्तों, यदि आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें आपके माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं, तो उससे बचने का प्रयास करें। कई लोग अपने सिरदर्द की डायरी भी बनाते हैं, जिससे उन्हें अपने ट्रिगर्स पहचानने में मदद मिलती है। अगर माइग्रेन बार बार हो रहा है, दर्द बहुत तेज है या आपकी पढ़ाई, नौकरी या रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, तो किसी योग्य डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर सलाह लें। डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार उपचार और दवाइयां बता सकते हैं। बिना सलाह के बार बार दर्द निवारक दवाइयां लेना सही नहीं है, क्योंकि इससे कुछ लोगों में सिरदर्द और बढ़ सकता है।
2: दोस्तों, माइग्रेन जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन यदि इसका सही समय पर ध्यान न रखा जाए तो ये जीवन की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है। अच्छी बात यह है कि यह सही जानकारी, स्वास्थ्य जीवन शैली और उचित इलाज से अधिकांश लोग माइग्रेन को अच्छी तरह नियंत्रित कर सकते हैं।
1: स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने शरीर की हर छोटी बड़ी परेशानी को समझिए, समय पर विशेषज्ञ की सलाह लीजिए और स्वस्थ आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए।
0: दोस्तों, ये थे हमारे आज के सेगमेंट और अब जान लेते हैं स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल का जवाब। तो दोस्तों, हमने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि भारत में सबसे पहला प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा की गई थी, और जिसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। और सही जवाब देने वाले हमारे कौन कौन से श्रोता साथी हैं मेघा?
3: सुदर्शन शाह, नंद कुमार ठाकुर, आर सी कामड़े, राम कुमार रेवार, जॉन डी कैस्ट्रो, पुंजाजी नावकर, राष्ट्रपाल गजभिये, जिशान वारसी, हीरामन, दिनेश वर्मा, नानक खन्ना, अजीत कसाना, सुरेश राठौड़, श्री कृष्ण बाठे, तुलसी मस्कीन, राजवीर सिंह यादव, दिलीप भावर, दिग्दर्शन गौण, नहीद खान, अरविंद कुमार, विट्ठल सुरोशे, रियासत हुसैन, चौधरी राजवीर सिंह, महाराज कीर्तन, मोहम्मद यासीन, सतेंद्र चंसौलिया पजौनिया, आमिर हुसैन, दीपेश वर्मा, बलवंत कुमार, मोहम्मद सईद अब्बासी, मोहम्मद जाहिद अली, सिद्धार्थ गोंडाना, विजय सुरालकर, मुजफ्फर अली खान, बीएल धाकड़, जगदीश धाकड़, आर्यन राज, गजानन येले, विनोद मूनत, सोहन जोशी, शकील अहमद, नंद कुमार सिंह, राधेश्याम पांडे, संजय ढींगिया,
0: धर्मेंद्र छेपा, मोहम्मद अमीर अंसारी, अजीत, मोहम्मद अल्ताफ राज, उमेश कुमार, परवीन चौहान, हाजी गफ्फार खां, सुरेश गगनेजा, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, लाल मोहम्मद अंसारी, राम शरण विश्वकर्मा, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कैलाश फूलमाली, सुरेश जायसवाल, शाहजी भोड़के, फागुराम यादव, धीरज भाई रवारी, मुकेश कश्यप, शकील अहमद इदरीसी, दुर्गा राम साहू, भगवत चौबे लाडला जी, रिहाना, सुदर्शन शाह। तो दोस्तों, ये आप सभी श्रोता साथी थे जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया था, और हमारे और भी श्रोता साथी थे जिन्होंने इस सवाल का सही गलत जवाब दिया था। तो दोस्तों, जो भी आप इसका आंसर करें कभी भी हमारे क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन को अच्छे से सर्च कर तभी उसका आंसर दें। और आपको हमारा आज का सवाल कैसा लगा हमें बताना नहीं भूलिए, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताना नहीं भूलिएगा हमारे इस पते पर।
3: हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर। हमारा पिन नंबर है 244901। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है
0: patramilaairampur@gmail.com। आप हमें दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने पत्र, अपने संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। दोस्तों, तो जैसे कि मौसम बदल रहा है तो आप अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और जो मौसमी फल हैं जैसे तरबूज है, खरबूजे हैं, खीरे हैं, तो इनको खाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इसी के साथ कार्यक्रम को ही संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी मोनिका कुमार
3: और मेघा सक्सेना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 5:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं अब किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं जसमेंद्र सिंह और दीपा कुमारी।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनन को आपकी बहन दीपा
1: और आपके भैया जसविंदर की
0: राम राम। और सुनाओ जसविंदर भैया, कैसे हो आप?
1: हम तो ठीक हैं दीपा बहन, और आप सुनाओ, आप कैसी हैं?
0: हम भैया एकदम बढ़िया हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भैया बहनों सब अच्छे से ही होंगे।
1: बिल्कुल, हम तो किसान साथियों के खुशहाली के लिए हमेशा ही प्रार्थना करते हैं, और हमारी खेती जो होती है ना वो हमारी ढाल होती है। और दीपा बहन,
0: हाँ भैया,
1: आपने देखी हुई कि आज जो हम बात करना चाह रहे हैं ना वो है विशेष रूप से
0: भिंडी के बारे में भैया।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो एक ऐसी सब्जी है ना जिसकी मांग बाजार में हमेशा रहती है, और किसान भाई इसे अपनाकर अच्छी आमदनियों प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल हमारो विषय भिंडी को सफल खेतियों को मानोगे भैया?
1: बिल्कुल दीपा बहन, आज हम भिंडी की खेती के बारे में एक ऐसी जानकारी साझा करेंगे अपने किसान साथियों के साथ में कि जो किसान भाई है ना अपनी फसल को बेहतर बनाए सकें और अच्छा उत्पादन ले सकें।
0: हाँ भैया, आजकल गांव में कई किसान भिंडी की खेती कर रहे हैं, इसको कारण भी साफ है भैया, कम समय में फसल तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी मांग बनी रहती है।
1: बिल्कुल दीपा बहन, भिंडी किसानन के लिए एक अच्छी नगदी फसल बन सकती है अगर इसमें मेहनत हमारे जो किसान साथी हैं अच्छे से करें। मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर किसान शुरुआत से सही तरीका अपनावें और तो जैसा अच्छा लाभ भी ले सकते हैं।
0: हाँ भैया, सबसे पहले तो किसान को खेत की तैयारी अच्छे से ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अक्सर देखो जाता है ना कि लोग बीज तो अच्छो ले आते हैं, लेकिन खेत की तैयारी उतनी अच्छे से ध्यान से ना कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही बात कही दीपा बहन, खेत की शुरुआत में ही जब तैयारी करते हैं ना तो भिंडी के लिए एक ऐसी जमीन की जरूरत होती है जहाँ पानी आसानी से निकल जाए, या खेत में पानी रुकन से जो होता ना जड़ को नुकसान पहुंच जाता है, और कभी कभी जो पौधा होता ना उनकी बढ़वार भी कम हो जाती है, धीरे बढ़ते हैं भाई।
0: हाँ भैया, और अगर किसान खेत में पहले से जैविक खाद डाल देना तो मिट्टी की ताकत तो बनी रहती है और उन्हें उपज अच्छी मिलती है।
1: दीपा बहन, बिल्कुल सही बात कही आपने, अगर बाकी साथ में सड़ी गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट खाद मिट्टी को और उपजाऊ बना देती है अगर हम पहली या दूसरी जुताई पर डाल दें तो। इसमें पौधन को जरूरी जो पोषक तत्व होता ना वे भी मिल जाते हैं, और मिट्टी की जो संरचना होती है वो भी अच्छी रहती है।
0: हाँ भैया, कई किसान सोचते हैं कि ज़्यादा बीज डालने से ज़्यादा पौधे होंगे और उत्पादन ज़्यादा होए, लेकिन ऐसा हमेशा सही ना होता भैया।
1: क्योंकि दीपा बहन ना, पौधन को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए, बहुत ज़्यादा घने पौधे लगाने से हवा धूप उनको कम मिलती है, जिससे कई प्रकार के रोग और कीट भी उसमें उनको खतरा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल भैया, भिंडी की खेती में सही किस्म को चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है भैया।
1: बिल्कुल दीपा बहन, किसान भाई अपने क्षेत्र और मौसम के अनुसार ही अच्छी किस्मन को चयन करें, और एक चीज को और ध्यान रखें दीपा बहन हमारे किसान साथी,
0: वो का भैया,
1: वो जो कि स्वस्थ और अच्छे बीज ही लेन से उनको जो अंकुरण है वो अच्छा होता है, और शुरुआत अगर मजबूत हुई ना तई अच्छा उत्पादन मिल पावा
0: भैया। और बीज उपचारों की बात भी किसान भैया को ध्यान रखना चाहिए।
1: दीपा बहन, बिल्कुल आपने सही बात कही, बीज उपचार एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, लेकिन जाको जो फायदा होता ना वो बहुत बड़ा होता है।
0: हाँ भैया,
1: इससे बीज में आने वाली जो बीमारियां हैं ना वो भी उनको खतरा कम हो जाता है, और पौधे जो होते हैं वे भी स्वस्थ रहते हैं।
0: अब बात करते हैं भैया सिंचाई की। कई किसान भैया ना पानी ज्यादा दे देते हैं, कई समय पर ना दे पाते हैं।
1: बिल्कुल आपने दीपा बहन अच्छी बात करी है यहाँ पर, जो गलती जो है ना कई बार नुकसान कर देती है।
0: हाँ भैया,
1: भिंडी को समय समय पर पानी देना चाहिए, लेकिन खेत में पानी भराव भी ना हो। बिल्कुल जरूरत के अनुसार अगर सिंचाई करेंगे ना हमारे किसान साथी, और गर्मी में नमी को विशेष ध्यान रखेंगे, तो उनसे जो फसल की उत्पादन लेना चाह रहे हैं ना वो अच्छी मिल सकती है।
0: हाँ भैया, और आजकल सिंचाई ड्रिप द्वारा करी जा रही है जो बहुत चर्चा में चल रही है।
1: दीपा बहन देखो, ड्रिप सिंचाई की बात जब आपने करी ना तो किसानन के लिए काफी फायदेमंद रहती है, जहाँ में पानी जो है वो सीधे पौधन की जड़न तक पहुंचता है, और पानी की बचत होती है। आपने देखी हुई ना कि बूंद बूंद पहुंचता है, और पौधन को लगातार नमी मिलत रहती है।
0: हाँ भैया, खरपतवार भी फसल को काफी नुकसान पहुंचा देती है, अगर सही समय पर उसकी देखभाल ना करें तो वो एक नुकसानदायक है।
1: बिल्कुल, शुरुआती समय में अगर दीपा बहन हमारे जो किसान साथी आती है ना, खरपतवार को ध्यान ना रखेंगे तो पौधन से पोषक तत्व छीन लेते हैं। इसलिए समय पर अगर उनकी निराई गुड़ाई करके जो खरपतवार हैं उनको खेतन से बाहर निकाल देना हमारे किसान साथी, तो खेत तो साफ रहेगा ही, जो पौधा है हमारो भिंडी को उसकी बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है।
0: हाँ भैया, भिंडी में कीटों की समस्याओं को देखने को मिलती है।
1: दीपा बहन देखो, कोई भी फसल हो वहाँ में कीटन की समस्या तो आता ही है। किसान भाई खेत को रोजाना अगर निरीक्षण करते रहेंगे ना, तो पत्तियों में या फिर जो तने होते हैं या जो फलियां बनती हैं उनकी ना, उनको ध्यान से देखें। अगर शुरुआत में समस्या पहले ही पहचान लेंगे ना, तो नियंत्रण आसानी से हो जाता है।
0: हाँ भैया, कई बार किसान बीमारी वर्ण को ध्यान न दे पाते हैं कि जामे बीमारी कौन सी लग रही है।
1: दीपा बहन, जय कारण है कि नुकसान ज्यादा होता अगर आपने बीमारी वर्ण को इंतजार करो ना, तो आपकी जो फसल है बस आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाए, और किसान जितनों जागरूक रहेंगे उतनों ही फायदा मिला है उनके लिए।
0: बिल्कुल भैया, और अब बात करते हैं खाद प्रबंधन की, क्योंकि सिर्फ

0: होती है ना, तो बाजार में वो अच्छी कीमत दे दी
1: हाँ
0: है। और नियमित तुड़ाईकरण से जो पौधा होता है ना भिंडी को, वो फल भी ज़्यादा देता है।
1: बिल्कुल भैया, मतलब एक अच्छी फसल के लिए शुरुआत से लेकर बिक्री तक हर कदम महत्वपूर्ण माना हो जाता है।
0: दीपा बहन देखो, बिल्कुल आपने सही बात कही। किसान भाई अगर खेत की तैयारी, बीज को चयन, सिंचाई, खाद और समय पर तुड़ाई को ध्यान रखे ना, तो भिंडी की खेती से बड़ो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आज की बातचीत को जय हमारा मकसद हो कि आप कैसे अपनी खेती करें, कैसे मेहनत करें और अच्छा लाभ पावें।
0: बिल्कुल, आप सभी जो किसान साथी हैं ना, अगर नई तकनीक अपनावेंगे ना और अपने खेत को ध्यान से देखेंगे, तो खेती को लाभ आपको माध्यम बन जाए। बिल्कुल।
1: बिल्कुल भैया।
0: और दीपा बहन देखो, आज की हमारी जो बात भिंडी से संबंधित थी वो बस यहीं तक। और हम अपने किसान साथियों को बता दें कि केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर जगह जगह पर विशेष किसान मेलों को आयोजन करो जा रहा है,
1: हाँ भैया बिल्कुल।
0: और उनमें हमारे जो किसान साथी हैं ना, उनके प्रति कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, उनको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं या कौन कौन से लाभ मिले, जाके बारे में जो मेला आयोजन करे गए ना, और वहाँ पर जो लोग एकत्रित भए, वहाँ पर जाकर हमारे भैया प्रवीण ने जो लोगों से बातचीत करी, बाको सुनवाई देते हैं।
1: हाँ भैया, क्योंकि जानकारी तो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। लेकिन दीपा बहन, बात सर पहले सुनवाते हैं अपने किसान साथियों के लिए कुछ संदेश।
2: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आपका परिचय? अनिरुद्ध सागर, किस विभाग से? पशुपालन विभाग।
7: अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और उसके उपलक्ष्य में ये ब्लॉक में एक किसान मेला आयोजन किया गया है। आपके विभाग में 12 साल में कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं?
6: हमारे विभाग में बहुत सी योजनाएं 12 साल में चलाई गई हैं। इसमें मुख्य रूप से हैं हमारे यहाँ खुरपका मुंहपका जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है हमारा, जो लगातार उस साल में दो बार चलता है,
7: जी
6: ये लगातार टीकाकरण चलता है, जिससे खुरपका मुंहपका बीमारी जो है जड़ से मिटाई जाए। तो ये योजना हमारे यहाँ चल रही है और लगातार अब जो आगामी जो माह आ रहा है जुलाई, 21 जुलाई से ये योजना हमारे यहाँ टीकाकरण की शुरू हो जाएगी।
7: तो इसमें क्या किसान भाइयों को शुल्क देना होता है या निशुल्क होता है?
6: ये निशुल्क होता है, इसमें कोई फीस नहीं होती है, ठीक, और फ्री चलता है ये।
7: अच्छा।
6: और प्रत्येक गांव में सबसे पहले हम लोग उस गांव में लगाते हैं जो कि हमारे जो नदी के किनारे गांव है, जहां पे बाढ़ आने का खतरा रहता है, और जो लोग निचले इलाके हैं नदी के आसपास के गांव जिसमें बाढ़ ज्यादा आ जाती है, वहां सबसे पहले वहां लगाते हैं, उसके बाद अन्य गांवों को प्राथमिकता दी जाती है।
7: तो इस तरीके से खुरपका मुंहपका की टीके जो है किसान भाइयों के जो पशु हैं उनको लगाए जाते हैं। इसके अलावा और कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है?
6: केंद्र सरकार द्वारा हमारे योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि आपका ये मुर्गी फार्म है, नीति 2022 के अंतर्गत जो जो हमारे पशुपालक भाई हैं बड़े स्तर पे मतलब अपना मुर्गी फार्म शुरू करना चाहते हैं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत LNM के अंतर्गत वो योजना चल रही है, जिसमें 10,000 मतलब मुर्गी का फार्म, 20,000 का, 30,000 का, ऐसे बड़े बड़े स्तर के जो प्रोग्राम है वो चलाए जाते हैं।
7: अच्छा। तो ये इसमें कुछ अनुदान सरकार द्वारा होता है?
6: देखिए, इसमें ये अनुदान भी मिलता है, इसमें ये है कि जो ब्याज होता है, ब्याज हमारी जो सरकार है वो 5 वर्षों तक जो ब्याज है वो खुद जमा करती है।
7: अच्छा।
6: और 1,00,000 यूनिट बिजली वो फ्री देती है, ठीक, और इसके अंदर 70% बैंक से लोन लेना होता है, 30% लाभार्थी को लगाना होता है।
7: अच्छा। तो इस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं या जो ये मुर्गी फार्म खोलना चाह रहे हैं तो बड़े स्तर पर खोल सकते हैं।
6: हाँ, खोल सकते।
7: तो इसमें सरकार का काफी योगदान रहता है। ये तो बात रही कि आपने बताया ये योजना आपके क्षेत्र में यहाँ पर चल रही है।
6: ये योजना हमारे बिलासपुर क्षेत्र में इस समय 5 जगह चल रही है, बिलासपुर विकास खंड के अंदर। आप अंडखेड़ी ग्राम है वहाँ देख लीजिए, आप नवाबगंज ग्राम है वहाँ देख लीजिए, आप खानपुर ग्राम है वहाँ देख लीजिए, जहाँ पे 1,60,000 मतलब वर्ड की है।
7: अच्छा।
6: और आप उसके बाद आप चले जाइए चंदैन के अंदर, 2 जगह चल रही है, ठीक है।
7: तो ये काफी प्रभावशाली योजना है और काफी लाभ ले रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी योजना है। इसके अलावा और कोई योजना चल रही हो जो
6: देखो, काम,

0: कामधेनु डेयरी योजना थी जो काफी टाइम पहले संचालित हुई थी
1: जी,
0: जिससे बहुत से पशुपालकों ने लाभ उठाया और दुग्ध विकास नीति के अंतर्गत हमारे जितने भी पशुपालक भाई थे जो अपनी आय को बढ़ाना चाहते थे उन्होंने मिनी कामधेनु डेयरी जो 25 पे आई थी, बड़ी की जो कामधेनु थी जो 50 गायों पे आई थी उसका फायदा उठाया। उनके अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, काफी लोग गायों को पाल रहे हैं और इस समय हमारे यहाँ पे जो योजना चल रही है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना।
1: अच्छा, इस योजना का लाभ हमारे किसानों में किस तरीके से ले सकते हैं?
0: इस योजना का लाभ ले सकते हैं कि इसमें एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें अनुदान बहुत अच्छा है।
1: अच्छा,
0: 50% अनुदान है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंदर, 25 गाय के लिए है। और ये जो योजना है ये जो है हमें देसी गाय जो हमारी है उसकी उच्च नस्ल वाली जो गाय है उनको पालने के लिए, क्योंकि उसके अंदर दूध की जो गुणवत्ता होती है, फैट जो होता है बहुत बढ़िया होता है, तो इसके पालने के लिए हमारी सरकार ने योजना चलाई है। ये तो इसमें 25 गाय की है जिसके लिए 62,50,000 की योजना है।
1: अच्छा,
0: जिसमें 31,00,000, 25,000 तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी।
1: जी जी जी।
0: 35% बैंक द्वारा लोन लेंगे आप और 15% लाभार्थी को लगाना होगा।
1: तो बहुत कम लागत लगानी पड़ती है, उसके बाद में अपना कारोबार।
0: हाँ, और अगर बहुत से जो हमारे बीच के मध्यम वर्गीय किसान भाई हैं वो इससे छोटी मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है।
1: अच्छा,
0: जो 10 गायों की है, जो 23,60,000 की है।
1: अच्छा,
0: उसमें भी यही प्रोसीजर है कि 50% अनुदान जिसको हम सब्सिडी कहते हैं और 35% आपका बैंक आपको ऋण देगी, 15% आपको खुद लगाना होगा।
1: अच्छा,
0: इसके लिए कोई भूमि की ज्यादा नहीं होती है। चारागाह के लिए आपको 1.6 हेक्टेयर आपको एकड़ जो है जमीन चाहिए, बाकी 0.4 अपने साइड के लिए जिसमें आप पशु को लेंगे उसका आधा हिस्सा मान लीजिए
1: जी
0: दूसरी में। और एक हमारे यहाँ योजना चल रही है इस समय, आपका जो हमारे बहुत छोटे किसान है जिन कहते हैं कि भाई हम पे इतना भी पैसा नहीं है, हम पे इतना भी नहीं है, तो उनके लिए चल रही है एक योजना 2 गायों के लिए।
1: अच्छा,
0: तो 2,00,000 रुपए मिलेंगे उनको जिसमें 40% सब्सिडी है, तो वो योजना है हमारे यहाँ पे।
1: अच्छा, वो तो हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए है। तो दो जो गाय लेनी होंगी वो बाजार से लानी होती है, तो उसका बिल वगैरह जमा करना होता है, किस तरीके से उनको अनुदान मिलता है?
0: अनुदान उनको ये है, उनका फॉर्म अपलोड होता है, आवेदन करेंगे वो हमारे पशुपालन विभाग में जाके, सीएमओ ऑफिस में चले जाएं या फिर नंद बाबा मिशन के अंतर्गत चल सकते हैं या एलएनएम के थ्रू भी वो अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के बाद आपकी फाइल पास होती है, फाइल उसके बाद बैंक में जाती है, अपना वो इंश्योरेंस बीमा कराएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए
1: तो कितना समूह से लोन मिला है आपको?
3: 1.5 लाख मिला सर।
1: 1.5 लाख रुपए मिला हुआ है, तो उससे समूह से लोन लेने के बाद में आपने अपना व्यवसाय शुरू किया है।
3: हाँ जी।
1: तो समूह को फिर आपको जो है
3: अब काम बढ़ाया है,
1: महीने भर किस्त देनी होती होगी।
3: हाँ जी, महीने की।
1: जी, तो आपके समूह में जितनी महिलाएं, कितने लोग अपना व्यवसाय कर रही हैं?
3: इसमें 6 लोग हम इसके काम कर रहे हैं, 6 लोग कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई अलग।
1: अच्छा।
3: से किसी ने बकरी ले रखी है, किसी ने कुछ मतलब पैसे से गवर्नमेंट पैसे किस्त देनी, जो कुछ ना कुछ करके देनी है किस्त।
1: जी जी जी। तो इस तरीके से ये योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी लखपति दीदी योजना
3: जी,
1: ये काफी कारगर साबित हो रही है और काफी हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो जो है अपना व्यवसाय कर रही हैं और अपने आत्मनिर्भर हो रही हैं।
3: हाँ जी, हाँ जी सर।
1: आपको इस समय हमारी बहुत सी ग्रामीण महिलाएं सुन रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे?
3: हम ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब हम खाली बैठे रहते हैं घर में, हमें एक अच्छा एक जरिया मिला है काम करने का
1: जी,
3: है ना, हमें जरिया मिला, हम इस योजना से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। और जो महिलाओं के पास काम नहीं है, गांव घरों की लेडीज है जो अपना कोई ना कोई काम करें और समूह में जुड़े। कई सोचती हैं हम शहर जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर पाती क्योंकि पढ़ी लिखी इतनी होती नहीं है, है ना। इसमें हम सब पढ़ी लिखे और अनपढ़ दोनों हम काम कर सकते हैं
1: जी,
3: और अपना व्यवसाय अपना चला सकते हैं
1: जी। चलिए, आपसे बात हुई, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका परिचय?
4: मेरा विनोद कुमार।
1: कौन से गाँव रहते हैं आप?
4: दल की।
1: ये दल की बिलासपुर में पड़ता है।
4: हाँ जी।
1: तो देखिए, आज हमारी बात आपसे ब्लॉक बिलासपुर में हो रही है, तो आपका यहाँ कैसे आना हुआ?
4: हमारा यहाँ आना हुआ, देखो ये किसान

0: मेला लगाया और
1: अच्छा
0: इसमें संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी हमें भी हो जाए।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो देखिए ये जो मेला लगा हुआ है, केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं इसके
0: हाँ जी
1: उपलक्ष्य में लगाया गया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं।
0: केंद्र सरकार ने सर योजनाएं चलाई हैं, किसान सम्मान निधि पहली योजना,
1: जी, ये
0: दूसरी
1: योजना 2019 में चलाई थी, तो इसमें क्या लाभ मिलता है किसान भाइयों
0: सन
1: को?
0: 2019 में योजना चलाई गई थी, तो किसान सम्मान निधि में जो योजना है किसान के लिए एक साल में 3 किस्तों का सामान दिया जाता है,
1: अच्छा, 3 किस्तें किसान भाइयों को दी जाती
0: हर
1: हैं
0: 4 महीने में दी जाती
1: चार
0: है।
1: महीने के अंतर पे, तो 2-2 हजार रुपए किसान भाइयों को
0: हाँ
1: मिलते
0: जी,
1: हैं,
0: दो दो हजार
1: तो
0: रुपये
1: इन पैसों से क्या किसान भाइयों का कुछ काम चल जाता है?
0: इन पैसों से किसान क्या है अपना खाद बीज में या भी जो भी लगाता है उससे संबंधित उसमें अपनी खेती में उपयोग करता है।
1: अच्छा, तो इस तरीके से ये योजना चल रही है, तो इसमें किन किन किसान भाइयों को लाभ मिल सकता है?
0: इसमें क्या है, जो किसान है किसान सम्मान निधि, जैसे विरासत वाले होते हैं किसान, जैसे 2019 के बाद में जमीन आई हुई उस लोगों के लिए लाभ मिल सकता है, या
1: अच्छा
0: फिर जो 2019 से पहले की जमीन खरीदी हुई किसान को उसको भी लाभ मिल सकता है,
1: अच्छा
0: और ज्यादा ही पुरानी किसान है उसको भी लाभ मिल सकता
1: अच्छा वो सभी किसान इसके पात्र हैं,
0: है।
1: इसका किस तरीके से लाभ मिलेगा, क्या क्या करना होगा किसान भाइयों को?
0: किसान के लिए क्या करना होगा, किसान के लिए अपना पहला आधार कार्ड, दूसरा खतौनी, फिर बैंक अकाउंट, फिर उसके लिए CSC जनसेवा केंद्र पे जाके अप्लाई करना होगा, फिर उसमें तहसील में जाके जमा करना होगा, यही
1: अच्छा
0: करते करते आपका उसका काम हल्के हो जाएगा,
1: अच्छा तो उसके बाद में उसके 2 हजार रुपये आना शुरू हो
0: उसके
1: जाएंगे,
0: बाद में आना स्टार्ट हो जाएगा
1: तो
0: सर।
1: ये योजना काफी अच्छी योजना है किसान भाइयों के लिए।
0: हाँ जी, मेरे कहने से तो बहुत अच्छी योजना है कि किसानों के लिए लाभ मिल रहा है।
1: इसके अलावा और कौन सी योजना किसान भाइयों के लिए? सर ये
0: फसल बीमा योजना चलाई है,
1: अच्छा
0: इसमें भी अच्छा आदमी को प्रॉफिट मिल रहा है कि जैसे भी कोई नुकसान होता है फसल के लिए तो टाइम टाइम पे उसके लिए फसल बीमा दिया जाता है।
1: अच्छा, ये फसल बीमा जो हमारे किसान भाई कराते हैं उसमें उनको जब नुकसान होता है जब मिलता हो,
0: हाँ जी, जब उसका नुकसान होता है सर्वे के अनुसार जो भी पैसा पाया जाता है सर्वे में उसको दिया जाता है।
1: अच्छा, तो ये योजना बहुत ही
0: अच्छी
1: अच्छी
0: है,
1: योजना है,
0: अच्छी है।
1: तो इस योजना में जैसे मान लिया पूरे गांव को मिलता है लाभ या कुछ लोगों को मिलता
0: नहीं,
1: है?
0: ऐसा नहीं है, जो ही इसको बीमा कराते हैं और वैसे ही संबंधित जिन लोगों के सर्वे में पाया जाता है जितना नुकसान भरपाई होती है उतना ही सरकार देती है,
1: अच्छा
0: ये ऐसा नहीं है कि हर आदमी के लिए चीज मिलती है।
1: अच्छा और कौन सी योजना चल रही है?
0: और प्रधानमंत्री मानधन योजना दी जा रही है,
1: अच्छा,
0: इसमें भी अच्छा देखने के लिए प्रचार मिला है।
1: तो इसमें क्या मिलता है, किसको किस तरीके से लाभ मिलता है?
0: मानधन योजना का सर यह है कि 3,000 रुपए के हिसाब से जो भी जिस हिसाब से उसकी उम्र होगी उसी हिसाब से पेंशन बांधी जाएगी, और महीने के हिसाब से मानधन योजना में 3,000 पेंशन 60 साल के ऊपर होने के बाद में उसको दी जाएगी।
1: अच्छा, तो इसमें कुछ पहले पैसे देने होते हैं या ऐसे ही
0: इसमें
1: सीधे बाद में
0: पहले
1: देते
0: क्या
1: हैं?
0: है सर, उसमें ऐसा है कि जैसे जो भी उसकी उम्र के लिहाज अनुसार यदि 18 साल का बंदा हो या 40 साल का बंदा हो, जिस हिसाब के ऑनलाइन निकल के डाटा आएगा महीने के हिसाब से किस्त का, जैसे 100, 200, 250 या 50 जो भी आएगा उम्र के हिसाब से उसको जमा करना होगा, जो भी होगा 40 साल तक के बाद में अगले आने वाले समय में 60 साल के बाद उसके लिए 3,000 रुपये महीना पेंशन स्टार्ट हो जाएगी।
1: आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत
0: ठीक है, धन्यवाद।
2: आपका परिचय?
3: मेरा नाम भगवत राम है, मैं कृषि विभाग में SMS के पद पे कार्यरत हूँ।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आज ब्लॉक बिलासपुर में केंद्र सरकार के 12 साल के उपलक्ष्य में एक किसान मेला लगाया गया है, केंद्र सरकार ने किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई है जिससे कि किसान भाई लाभान्वित हुए?
3: देखिए केंद्र सरकार द्वारा हमारे यहाँ पे कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें प्रमुख जो योजनाएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली हमारी PM किसान निधि योजना।
1: अच्छा, ये योजना काफी समय से चल रही है किसान भाइयों के लिए चलाई गई, तो इसमें कौन कौन किसान भाई पात्र हैं?
3: भारत सरकार ने 2019 फरवरी के महीने में स्टार्ट की थी
1: जी,
3: एक क्राइटेरिया रखा था कि कौन कौन से किसान पात्र हैं और कौन कौन से अपात्र हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि पात्र कौन है
1: जी।
3: पात्र किसान है हमारे जिसका नाम खतौनी में होगा, जैसे कि 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा उनसे लेकर के 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ सभी हमारे किसान भाई माने जाएंगे
1: जी।
3: इसमें उन्हें करना क्या होगा, अपना आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और खतौनी लेके आवेदन करना जनसेवा केंद्र पे
1: जी।
3: इसके साथ ही जो अपात्र किसान हैं उनके बारे में बता देता हूँ
1: जी।
3: जैसे हमारे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए
1: जी,
3: CA हो गए, इसके साथ में माननीय मंत्री जी
1: जी,
3: माननीय प्रमुख जी
1: जी
3: और माननीय विधायक,
1: ये लोग इससे बाहर रहेंगे। इसके साथ साथ जो सरकारी सेवा दे रहे हैं उनकी भी इसमें पात्रता है या नहीं?
3: देखिए इसमें जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं
1: हाँ,
3: उनको छोड़ा गया है।
1: अच्छा,
3: बाकी उसके

0: ऊपर के थर्ड ग्रुप हो गया, सेकंड क्लास हो गया, और
1: जी
0: ये सभी अपात्र की श्रेणी में आते हैं,
1: अच्छा
0: या फिर जिनकी पेंशन 10,000 से नीचे है वो पात्र होंगे, और 10,000 से ऊपर वाले वो अपात्र किसान होंगे।
1: जी, तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल रहा है। क्या मियां बीवी दोनों को इसका लाभ मिलेगा या सिर्फ एक ही को मिलेगा?
0: देखिए, हमें ये स्कीम एक परिवार में एक ही व्यक्ति को देनी है, चाहे उनके पति ले लें या फिर पत्नी ले लें। और परिवार का मतलब होता है पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे।
1: जी, जैसे ही कोई बच्चा अगर उनका बालिग हो जाएगा तो उसको अलग से इसका योजना का लाभ मिल जाएगा।
0: बालिग होने के बाद उनकी शादी होगी, शादी के बाद वो पात्र होगा
1: जी,
0: बच्चा।
1: तो इस तरीके से इस योजना का लाभ हमारे किसान भाई ले रहे हैं। क्या कभी कभी दिक्कत आती है कि पैसे रुक जाते हैं, तो वो क्या समस्या आती है? क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि किसान भाई कहते हैं हमारे पैसे रुक गए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, पैसे तीन चार कारणों से रुकते हैं हमारे किसान भाइयों के।
1: जी
0: एक है ईकेवाईसी, सभी किसान पहले तो अपनी ईकेवाईसी करवा लें।
1: जी
0: दूसरा होता है भूमि अंकन। भूमि अंकन का मतलब ये है कि किसान की जमीन तहसील से चढ़वानी होती है किसान को,
1: जी लेखपाल महोदय के द्वारा।
0: तो कई किसान अपने लेखपालों से ये जमीन का अंकन नहीं करवा पाते हैं, इसी कारण उनकी किस्तें रुक जाती हैं। इसके अलावा आजकल एक हमारे पीएम किसान निधि की योजना में एक केस आया हुआ है, जैसे कई लोग पति पत्नी वो पैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों की किस्तें हमने रोक दी हैं। अब उसमें होगा क्या कि या तो पति पैसे जमा करें, पत्नी पैसे जमा करें, ठीक है, तो एक बेनिफिशियरी पैसे वापस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे बेनिफिशियरी का हम चालू कर देंगे, ठीक
1: जी,
0: है, दोनों के हमने रोक रखे हैं।
1: उसमें एक ही को लाभ मिलना है। जी,
0: जी।
1: तो इस तरीके से इस योजना का लाभ हमारे किसान भाई ले रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं किसान भाइयों के लिए लाभान्वित करने के लिए चलाई जा रही हैं?
0: देखिए, अभी हाल फिलहाल में पिछले वर्ष ही हमारे यहाँ पे प्राकृतिक खेती की योजना आई है, तो
1: जी
0: ये योजना हमारे किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा एक किसान है उनको हम 4,000 रुपये एक वर्ष में देते हैं,
1: जी
0: ताकि वो अपना जैसे कि बर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर नीम ऑयल हो गया, या ट्राइकोडर्मा हो गया, या जैविक जो पेस्टिसाइड होते हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी फसल को,
1: जी
0: इसके
1: अच्छा
0: लिए सरकार ने ये प्राकृतिक खेती वाली योजना चालू की है।
1: जी
0: उसके अलावा हमारे यहाँ पे देखिए एक योजना और आई है, मिलेट्स पुनरोद्धार योजना,
1: जी जी
0: ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो मोटे अनाज होते हैं सरकार उसकी खेती को प्रोत्साहित करती है।
1: जी इसमें जो है किसान भाइयों को किस तरीके से लाभ मिलता है?
0: देखिए, मोटे अनाज में पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से हमारे अनाज आते हैं।
1: जी
0: एक है हमारा सांवा, कोदो, रागी, कुटकी, अनारदाना
1: जी
0: और ज्वार, बाजरा,
1: जी
0: ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या होता है किसान को कि पोर्टल पे बुकिंग करानी होती है हमारे विभाग में आकर, तो हम उनको एक एकड़ का बीज मुफ्त देते हैं
1: जी
0: ताकि हमारे किसान इस ओर भी अग्रसर हों।
1: जी तो इसको किसान भाइयों को बोना होता है तो बाद में क्या वापिस करना होता है या वो अपने इस्तेमाल में ही ले सकते हैं?
0: जैसे वो उनकी उपज आ गई, आने के बाद वो किसी भी मंडी में सेल कर सकते हैं, या फिर नजदीकी हमारे रुद्रपुर है वहां पे भी कई सारी कंपनियां हैं या फिर मंडियां हैं, वहां पे सेल कर सकते हैं, जिसका उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सकता।
1: जी, तो ये काफी अच्छी लाभकारी योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए। और कहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई मोटा अनाज खाते हैं तो स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहता है, क्योंकि
0: जी
1: हम गेहूं धान खा रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खराब रह रहा है, लेकिन अगर हम जैसे बाजरा है, मक्का है, कोदो है, रागी है, अगर इनका हम सेवन करते हैं अपने खाने में तो काफी हद तक हम कुछ बीमारियों से भी बच सकते हैं।
0: देखिए, आजकल हो क्या रहा है, गेहूं धान
1: जी
0: यही दो चीजें हम खा रहे हैं। अगर हम अपनी थोड़ी डाइट में बदलाव करेंगे तो
1: जी
0: निश्चित ही हमारे शरीर में जो बीमारियां हो रही हैं उनकी कम हो जाएगी संख्या,
1: जी
0: और हमारा लीवर भी ठीक होगा। जब हमारा लीवर सही होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
1: ये तो आपने इस योजना के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा और भी योजनाएं चल रही हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं?
0: देखिए, एक योजना इस समय बहुत बढ़िया है, इस समय जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: जी
0: इसमें देखिए, केंद्र सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एक संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत होगा क्या कि पहले क्या होता था, पूरी ग्राम पंचायत को मुआवजा देते थे हम लोग, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने कि जो इंडिविजुअल किसान है, अकेला किसान, उसकी अगर फसल खराब हो जाती है उसको भी हमारे विभाग से ये मुआवजा मिलेगा।
1: जी पहले होता था कि अगर पूरे ग्राम पंचायत में नुकसान होता है तब उनको जो है
0: उसको हम लाभ मिलता था, एक तिहाई अगर उसकी फसल नष्ट हो रही है तब हम उसको मुआवजा देते थे
1: जी।
0: लेकिन अब क्या है, अब तो हम इंडिविजुअल किसान को भी दे सकते हैं
1: जी। तो ये काफी लाभकारी योजना है हमारे किसान भाई, इसमें किस तरीके से जुड़ सकते हैं?
0: अपने डॉक्यूमेंट लेने हैं, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, खतौनी
1: जी,
0: ये लेकर नजदीकी जनसेवा केंद्र पे जाना है। जाने के बाद आपको अप्लाई करना है
1: जी।
0: इसका समय है जुलाई, एक जुलाई में होता है और एक दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में, तो ये 2 माह रहते हैं। अगर किसी भी किसान भाई को कराना है तो नजदीकी केंद्र से, जनसेवा केंद्र से अपने करा सकते हैं
1: जी। जी इसके अलावा और कोई भी योजना चलाई गई है?
0: इसके अलावा एक योजना और है, पीएम कुसुम योजना
1: जी।
0: इसके अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को 60% सब्सिडी पे
1: जी
0: सोलर पंप दिए जाते हैं हमारे विभाग से। सोलर पंपों में भी कई तरह के सोलर पंप हैं, जैसे कि 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 10 किलोवाट।
1: तो ये जो किलोवाट आपने बताए, तो ये हमारे किसान भाई किसी एक को लगा सकते हैं या सभी को लगा सकते हैं?
0: देखिए इसमें करना क्या होता है हमारे किसान भाइयों को कि ये सारे तो एक किसान को मिलना पॉसिबल नहीं है
1: जी।
0: एक किसान को 5 वर्ष के लिए एक ही सोलर पंप दिया जाएगा, चाहे वो 2 किलोवाट का ले ले या 3 का ले ले, 5 का ले ले, 10 का ले ले, 7.5 का ले ले।
1: तो इसमें किस तरीके से चयन होता है हमारे किसान भाइयों का?
0: इसमें ऐसा होता है कि लखनऊ से हमारे यहाँ पे योजनाएं आती हैं, जैसे अब ये इस समय चल रहा हमारा जून का महीना
1: जी,
0: जुलाई में ये स्कीम आएगी और पूरे वर्ष चलेगी
1: जी।
0: जिस किसी किसान भाई को सोलर पंप चाहिए वो हमारे विभाग में आकर आवेदन कर सकते हैं। और उसमें करना क्या है, आपको टोकन मनी देनी होती है जो होती है हमारी 5,000 रुपए धनराशि। जब वो टोकन फीस जमा कर देते हैं फिर उसके 1 महीने बाद आपके, पहले तो आप टोकन फीस जमा करेंगे, टोकन फीस जमा करने के बाद आपका एक स्लिप निकलेगी जिसमें सोलर पंप की कीमत दर्शाई गई होगी, उस कीमत को आप बैंक में जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद कंपनी वाले आपके घर पे सोलर पंप लगाने के लिए आ जाएंगे
1: जी। इस तरीके से उनको सोलर पंप लग जाता है, सोलर पंप लगवा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, एक बार कीमत उनको देनी होती है उसके बाद में वो लगातार अपनी सिंचाई कर सकते हैं।
0: देखिए 25 साल की गारंटी भी है
1: जी। जी
0: अगर कोई किसान भाई लगाना चाहे तो हमारे विभाग से ले सकते हैं
1: जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा किसान भाइयों से आप क्या सहयोग चाहते हैं?
0: देखिए हम किसान भाइयों से प्रार्थना ही कर सकते हैं
1: जी,
0: और वो भी 2 प्रार्थनाएं करनी है हमें उनसे। एक तो ये कि वो इस समय खाद थोड़ा हिसाब से डालें, देख कर डालें
1: जी,
0: और अपनी मिट्टी की जाँच की परीक्षण के बाद ही डालें
1: जी।
0: और दूसरा ये आजकल होड़ मची हुई है पेस्टिसाइड डालने की, ये थोड़ा कम की जाए, जैसे कि कई किसान होड़ में डालते हैं कि भाई उसने 200 ml डाली है 300 ml डालूंगा
1: जी, जी।
0: तीसरा कहता है कि मैं 400 ml डालूंगा।
1: इस तरीके से वो जो है रासायनिक जो हमारे दवाएं उनकी मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं
0: जी। जी जी इससे हो क्या रहा है, हमारे शरीर पर ही उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है
1: जी, जी।
0: और हमारी जो अस्पतालों में लाइनें लग रही हैं वो निश्चित रूप से इसी कारण से ही लग रही है
1: जी। तो संतुलित मात्रा जो है वो ही अगर हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दीपा बहन, अभी हमारे किसान साथी ने जो केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर विशेष किसान मेले को आयोजन हुए रहो ना बाप रेडियो रिपोर्ट सुनी, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो किसान साथी सुन रहे होंगे उन्हें जब पता चल गई होगी कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो हमारे काम की हैं और इनसे हम कैसे लाभ ले सकते हैं।
3: बिल्कुल भैया।
2: और अब देखो कार्यक्रम में समय है गीत संगीत को, तो अब देर न करते हुए अपने किसान साथी के लिए सुनवाते हैं एक प्यारा सा लोकगीत जिसके बोल हैं करो गांवों की सफाई और जिनको जिसको आवाज दी है चेतराम बर्माना।

0: दीपा बहन, अभी हमारे किसान साथियों ने जो लोकगीत सुनो, और हमें उम्मीद है कि लोकगीत हमारे किसान साथियों को पसंद जरूर आ हुआ है।
1: बिल्कुल भैया। और अब बात करते हैं कृषि संकेत की। तो आज कृषि संकेत में क्या जानकारी है हमारे भैया बहन के?
0: दीपा बहन, देखो आज हम बात करेंगे मक्का की। मक्का खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में लाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। अगर मौसम के हिसाब से सही किस्म को चुनाव कर ले हमारे किसान साथी तो बादशाह अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया। सबसे पहले खरीफ मौसम की बात करी जाए ना, तो खरीफ मक्का की बुवाई जून से जुलाई तक करी जाती है। इस समय ऐसी किस्म अच्छी रहती है जो बारिश और बदलते मौसम को सहन कर सके।
0: दीपा बहन, बिल्कुल सही बात कही आपने। खरीफ मौसम में किसान भाई जिन किस्मन को चयन करें उनमें है HQ PM1 और HQ PM5, DHM 117, PMH 1, विवेक हाइब्रिड 9, प्रफुल्ला पूसा हाइब्रिड 9, हाइब्रिड 5 और कंचन जैसी उन्नत किस्मन को चुनाव हमारे जो किसान साथी हैं वो कर सकते हैं। और अच्छी देखभाल में ये जो किस्म है ना वो बड़ी अच्छी उत्पादन देती हैं।
1: हाँ भैया, अब बात करते हैं रबी मक्का की। रबी मक्का की बुवाई अक्टूबर से नवंबर के बीच करी जाती है भैया। ठंडे मौसम में मक्का की बढ़वार अच्छी होती है और कई क्षेत्रों में रबी की पैदावार ज्यादा मिलती है।
0: दीपा बहन, अगर हम बात करें ना रबी मौसम के लिए, तो हमारे किसान साथी DHM 121, HQ PM7, PMH 3, गंगा 11,

0: शक्तिमान एक, शक्तिमान द्वे जैसी किस्मन में से कोई एक किस्म अपना सकते हैं। और रबी में सिंचाई पर बड़ो ध्यान रखने हैं हमारे किसान साथियों के लिए, और खाद प्रबंधन तो बहुत ही जरूरी होता है।
1: हाँ भैया, जायद मक्का की बुवाई फरवरी से मार्च तक करी जाती है। गर्मी के मौसम में जल्दी तैयार होने वाली किस्में ज़्यादा लाभ देती हैं भैया।
0: आपने देखो दीवा बहन, बिल्कुल सही बात करी। जायद मौसम में किसान भाई विवेक हाइब्रिड 9, पीएमएच 1, पूसा हाइब्रिड 5 और जल्दी पकन वाली जो हाइब्रिड किस्म है ना, उनको प्रयोग कर सकते हैं। और गर्मी में देखो दीपा बहन, सिंचाई की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए हमारे किसान साथियों के कि समय पर लगातार उनको पानी मिल रहा है और नमी की भरपूर मात्रा बनी रहे।
1: बिल्कुल भैया, किसान भाइयों, केवल किस्म अच्छी होने से ही पैदावार अच्छी नहीं बढ़ती है। इसके लिए खेत की तैयारी, सही दूरी पर बुवाई, बीज उपचार, समय पर खाद पानी हो बहुत जरूरी होते भैया।
0: मक्का के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे अच्छी रहती है दीपा बहन, और बुवाई से पहले अगर खेत को ना अच्छी तरह से हमारे जो किसान साथी हैं तैयार कर लें तो बास अच्छी पैदावार मिल सकती है। और एक चीज़ को और हमारे किसान साथी ध्यान रखें,
1: बुका
0: जो
1: भैया।
0: भी बीज हमारे किसान साथी लें वो पहली बात तो प्रमाणित बीज लें, और प्रमाणित बीज लेने के साथ साथ उपचारित जरूर होना चाहिए, और उपचारित ना है तो भाई घर पर भी उपचारित कर सकते हैं।
1: हाँ भैया, फसल में फूल आन आन से ना और दाना भरने समय पानी की कमी ना होनी चाहिए। इस समय सही सिंचाई करने से दानों वजनदार बढ़ता है और उत्पादनों अच्छे मिल जाते हैं।
0: दीपा बहन देखो, किसान भाई मिट्टी की जांच के आधार पर अगर खाद को प्रयोग करें ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन सबको संतुलित उपयोग अगर हमारे किसान साथी करें और समय पर खरपतवार को नियंत्रण कर लें तो मक्का की फसल से बहुत अच्छे उत्पादन हमारे किसान साथी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया, तो किसान भाइयों, सही मौसम से सही किस्म को चुनाव करेंगे ना तो खरीफ में अच्छी हाइब्रिड किस्में, रबी में ठंड सहने वाली किस्में और जायद में जल्दी तैयार होने वाली किस्में लाभ हैं।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही दीपा बहन, जिन किस्मन को चयन हमारे किसान साथी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों को हमारे किसान साथी और ध्यान रखें। जैसे हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो अनाज के लिए यानी कि मक्का की जो खुद खान के लिए हमारे किसान साथी मक्का की फसल करते हैं, तो
1: हाँ
0: माँ में ध्यान रखें कि किस समय हमारी जो फसल है वो पकन की स्थिति में है, ध्यान रखें उस समय भी हमारे किसान साथी सिंचाई को विशेष ध्यान रखें।
1: बिल्कुल भैया, नमी
0: और
1: बनी रही तो फसल अच्छी रही।
0: जाके अलावा हमारे बहुत सारे किसान साथी जो मक्का है ना बाको मुर्गी दाना है बाकी प्रयोग करते हैं यानी कि उपज लेते हैं बाकी, तो बामें क्यों कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखने हैं, कितनी नमी पर अपनी मक्का की जो फसल है बाकी कटाई करवाने हैं, और कटाई एक साथ करवावें। अब तो बहुत सारे यंत्र
1: बहुत
0: ऐसे
1: सुविधा
0: आए
1: हाँ भैया, बहुत सुविधाएं आ गई हैं।
0: तो हमारे किसान साथी कुछ चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो हम समझते हैं जो मक्का है ना बाकी फसल से हमारे किसान साथी बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और दीपा बहन देखो, बात तो हम अपने किसान साथियों से और करेंगे, लेकिन हम बता दें कि जो हमारे किसान साथी हैं ना इस समय अपने पशुओं की देख रेख में भी कुछ काम जरूर करें।
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: भैया,
0: देखो आप देख रही हैं ना कि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, ऐसे में अपने पशुओं के लिए जो जल की व्यवस्था है, पानी पिलान की व्यवस्था है वो ठीक से करें।
1: बिल्कुल भैया, बार बार पानी पिलाना जो बहुत जरूरी है, जैसे हमें पीना जरूरी है ऐसे हमारे पशु उनके लिए जरूरी है।
0: लेकिन एक चीज को ध्यान रखें, हमारे गांव में जो किसान साथी होते हैं ना वे अपने पशुओं के लिए पोखरन में तालाबन में पानी पिलान को काम करते हैं जो बिल्कुल ना करें। ऐसे में खुद का है जो हमारे किसान साथी हैं ना अपने पशुओं को तालाबन में पोखरन में तो ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पानी कभी कभी रुको हुआ होता है, और जो गांव से नाली के माध्यम से जो पानी
1: गंदो
0: जाता है
1: पानी जाता है।
0: वो भी बने में ही जाकर शामिल हो जाता
1: हाँ
0: है,
1: भैया,
0: और पशु की एक आदत बहुत गंदी होती है। अगर आप अपने पशुओं के लिए तालाबन में पोखरन में ले जा रहे हो तो आप चाहे घर पर पानी पिला के ले जा रहे हो ना, लेकिन वो पशु घर पर पानी ना पियाए
1: हाँ, वो
0: वो
1: उन्हें पानी बहुत अच्छा लगता
0: आपके देखी हुई पहले हम घर में ही गड्ढा खोद कर पानी रोक लेते हैं,
1: है।
0: वहाँ में कुछ लोहे के बर्तन वगैरह डाल देते हैं, तो वहाँ को पानी जो है हमारे जो जानवर हैं वो बड़ा पसंद करता है।
1: हाँ
0: तो
1: भैया,
0: ध्यान रखें ऐसे स्थान पर अगर आपके जो पशु हैं वो पानी पीने की
1: बिल्कुल
0: कोशिश कर
1: भैया,
0: रहे
1: छाया में बांधे उन्हें, विशेष
0: हैं।
1: छोटे जो हमारे मतलब जानवर के बच्चा होते हैं उनको विशेष ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, तो पानी की व्यवस्था के लिए आप अपने घर पर ही अपने पशुओं के लिए पानी पिलवाएं ताजो और स्वच्छ पानी। जाके अलावा देखो तालाबन में पोखरन में ले जाने के लिए अपने जो पशु हैं उन सब बचें, क्योंकि वहाँ से कई प्रकार के संक्रमण हमारे पशुओं में हो जाते हैं,
1: हाँ भैया,
0: और जब एक बार संक्रमण हो जाता है ना दीपा बहन हमारे पशुओं में तो

0: उनको रोकना या उनको उपचार करना बड़ा कठिन पड़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: एक तो महंगा हो जाता है और कठिन भी पड़ जाता है।
1: हाँ।
0: और बहुत सारे किसान साथी तो ऐसी लापरवाही कर देते हैं कि उनके उपचार में थोड़ी सी भी अगर देरी भई तो तुरंत ही हमारे जो पशु हैं ना उनकी मौत तक हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को अगर हमारे किसान साथी ध्यान रखेंगे तो हम समझते हैं कि हमारे जो किसान साथी हैं ना उनके पशु ठीक रहेंगे।
1: ठीक रहेंगे भैया।
0: और दीपा बहन देखो, अब हम बता, बहुत अधिक समय ना है तो हम अपने किसान साथियों के लिए बताने कि कल के कार्यक्रम में काका कल चर्चा को विषय होगा अरहर की सफल खेती। कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष पर कार्यक्रम जाएगा। साथ ही लोकगीत कृषि संकेत में हम एक जानकारी देंगे गन्ने में सामयिक कृषि कार्य और मौसम को पूर्वानुमान भी बताएंगे। साथ ही किसान साथियों अब हम आपको बताएंगे कि कल को मौसम कैसे रहने की संभावना है। कल अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडलीय आर्द्रता 47% रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। जो तो हो मौसम को अनुमान, और कल हवा की दिशा जो है पश्चिम दिशा से और गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा की गति रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है।
1: तो भैया अब हमें समय बिल्कुल इजाज़त न दे रहे हो कि हम अपने भैया बहनों से और बातें करें।
0: तो अब कार्यक्रम के अंत में दोनों लोग कर लें
1: राम राम, राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:30 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इंग्लैंड में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यून कमेंट्री। इसके अलावा ऐप पर विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित लगातार होते रहेंगे। अब से कुछ ही पलों में अगला प्रसारण।
1: वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले

अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या रंजन। फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम होगा 7:00। इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग ये कार्यक्रम सुनिएगा, समय होगा 7:45 पर।

रात 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे नाटिका मेन्यू कार्ड, मूल कहानी ओ हेनरी, हिंदी नाट्य रूपांतर मुरली मनोहर जोशी, निर्देशन मुख्तार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता मोतीलाल पर। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। ढलती जाए रात, रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जागो सुबह हो गई। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में कल आप सुनेंगे श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार होंगे वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। कल आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे, साथ ही इसका पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। पुराने फिल्मी गाने आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। समय होता है सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर। वंदे मातरम एक जय घोष ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 8:15 पर। लेखक है मिलिंद सबनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण सुनेगा दोपहर 2 बजे। नए फिल्मी गाने हम रोज लेकर आते हैं सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। कार्यक्रम होता है चित्रलोक।

आज के फनकार कल ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन पर। इसका प्रसारण होता है सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। 11 बजे लेकर आएंगे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। 1 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा सुरीला सफर।

सदाबहार नगमे लेकर आएंगे 2:30 पर, दोपहर 3 बहने सुनेंगी सखी सहेली कार्यक्रम, शाम 4 पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी मेरी मकान मालकिन, तराने नए पुराने कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता कार्यक्रम होगा। रात 8 हवा महल में नाजनीन की लिखी झलकी सुनिएगा पुरातत्व के तत्व, आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:00। 10 छाया गीत प्रस्तुत करेंगे राजुल अशोक, ढलती जाए रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11:00।

अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति रचना सुनी। फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। अब सुनिए आक्रोश फिल्म का भजन वंदना खांडेकर के स्वर में। वसंत देव के लिखे इस गीत की धुन बनाई है अजीत बर्मन ने।

0: गज तत् वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगल कालीन वाद्य है, किंतु मुगल कालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य तीन आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दांड का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य चार तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है, फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरब के 5 तार तथा शेष तरब के तार दांड के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दांड के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगलियों से कर्ण, खटका, मुरकी, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है, किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।

0: अभी आप श्री विनायक वोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे।
1: गज तत् वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: संगठनों स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: फौजी भाइयों को अब हम सुनवा रहे हैं बंधन फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज में। बोल लिखे हैं देव कोहली ने, संगीत आनंद राज आनंद का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म गुलाम में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत जतिन ललित का।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल का गाया सड़क फिल्म का गीत, तर्ज नदीम श्रवण की बोल सुरेंद्र साथी के।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विद भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग भैरवी से। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने राग भैरवी पर आधारित श्री 420 फिल्म का गीत सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पहाड़ी पर आधारित वक्त फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

राग पहाड़ी के बाद अब बारी राग अहिल्या बिलावल की। परिचय फिल्म से ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलजार के, संगीत राहुल देव बर्मन का।

ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: अभी आपने राग अलहैया बिलावल पर आधारित परिचय फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एला कार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
1: शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे। लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
2: ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
3: आप पहली बार यहाँ खाने आए हैं इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप

0: पर जाकर खत्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग।
1: तो क्या सभी मेज के मेनू कार्ड इसी तरह के हैं?
0: जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मेनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है।
1: दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है?
0: देखिए, मेरी सलाह लीजिए, ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
1: यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है?
0: ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय।
1: बाय बाय बैरा।
2: यस मैडम, कमिंग।
3: क्या खाइएगा?
1: मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ।
3: ओके मैडम।
1: बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मेनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए कि वो आज क्या क्या खाने वाला है। यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। एक प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप, सलाद।
4: हेलो सर।
5: यस मैडम।
1: शायद आप ही यहाँ के मालिक हैं।
5: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
1: देखिए, ये आपके यहाँ का मेनू है, मैं इसे दोपहर अपने साथ ले गई थी और साफ साफ टाइप करके ले आई हूँ। अगर इस तरह आप अपने मेनू कार्ड मेज पर रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की साख भी बढ़ेगी।
5: थैंक यू मैडम, आप ठीक कहती हैं। मगर हमारे यहाँ रोज नई नई चीजें बनती हैं, इसलिए कम से कम आधा मेनू तो हमें रोज ही बदलना पड़ेगा।
1: तो इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, मैं टाइपिंग का काम करती हूँ और रोज यही खाना खाने आती हूँ। अगर आप हर शाम मुझे दूसरे दिन बनने वाले खाने की लिस्ट दे दिया करें तो दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे टाइप करके भिजवा दूंगी।
5: ओह वंडरफुल वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे नहीं लेंगे। ओके
1: ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ ही अगर एक और बात मान ले तो बड़ी आभारी रहूंगी।
5: यस।
1: खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दिया करें, बस इसी होटल से लगा मेरा कमरा है, रूम नंबर 87।
5: मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं जरूर आपका खाना पहुंचाने का इंतजाम करवा दूंगा।
1: थैंक यू वेरी मच। आपको तो ऐसा करिएगा कि जब आप शाम का खाना भिजवाएं तो दूसरे दिन का मेनू भिजवा दिया करिए, और जब सुबह चाय लेकर बैरा आएगा तो उसके हाथ में टाइप किया मेनू भिजवा दूंगी और शाम के मेनू के बारे में भी पूछताछ कर लूंगी।
5: ठीक है ठीक है।
1: अच्छा, कुल कितनी मेज है यहाँ?
5: मेज 12।
1: तो 12 यह है, एक आपके लिए और दो फालतू, कुल 15 मेनू कार्ड, ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
1: एक बहुत बड़ी समस्या कितनी आसानी से सुलझ गई। आज ही वॉल्टर को पत्र लिखूंगी तो वो बहुत खुश होगा। मगर जब से मैं इस कमरे में आई हूँ उसके पत्र ही आने बंद हो गए। पता नहीं वह किस तरह से इतनी मेहनत कर रहा है। कभी कभी कितनी अजीब घटना घट जाती है। क्या पता था मुझे कि वॉल्टर से प्रेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्टर कितनी मेहनत करता है उस फॉर्म में, रात दिन उसी में जुटा रहता है। काश उसके अनाज के गोदाम में उस दिन आग नहीं लगती तो फिर मुझे इस तरह शहर थोड़े ही आना पड़ता। क्या भयंकर आग थी उस दिन।
6: वॉल्टर, सारा अब क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो सारा, सब कुछ चलकर खाक हो गया।
1: अब इस तरह रोने से क्या होगा वाल्टर, हिम्मत न थारो, मेहनत करो और फिर से इस फॉर्म को अनाज से भर दो।
6: क्या सोचा था, क्या हो गया सारा, भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए।
1: सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं वाल्टर, उनसे क्या घबराना, हम नए सपने दोबारा बुन लेंगे, तुम मेहनत करो।
6: मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे, सारी पूंजी सारा अनाज आग ने जलाकर खाक कर दिया है, और सारा एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं।
1: देखो वाल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है, गोडाउन जल गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। उठो, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात सूझिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए।
6: कहो।
1: देखो वाल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि तुम तो यहीं रहो, वापस उस फॉर्म को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ, वहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूंगी, बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
6: लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 माह बाकी हैं, और 10 महीने तक तुमसे अलग नहीं सारा, ये नहीं हो सकता।
1: वाल्टर, मैं लड़की होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ, और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो, सिर्फ 10 महीने की तो बात है।
6: हा?
1: और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिसे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ कमा लूंगी।
6: 10 महीने सारा, सोचकर ही मन कांपने लगता है।
1: लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वाल्टर। और एक बात और भी है वाल्टर, कुछ दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत आंक सकेंगे।
6: सारा।
1: वाल्टर। आठ महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, और वाल्टर ने लिखा था कि वह उस दिन स्वयं मुझे लेने आएगा। ओह, कितना सुहाना दिन होगा वो, पता नहीं कितना बदल गया होगा वाल्टर।

0: आपने बुलवाया था मुझे?
1: यस मैडम, प्लीज हैव योर सीट।
0: थैंक यू।
1: देखिए, अब बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीजें ग्राहकों को दी जाएगी।
0: जी हाँ, कल मौसम का पहला दिन है। ओह वाल्टर
1: जी, क्या कहा आपने?
0: कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप क्या नई डिशेस बनाते हैं?
1: बस जरा हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर रहता है। हमारी खास डिश है हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: उसे भी यह सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है।
1: जी किसे?
0: माफ कीजिएगा, मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। हाँ, तो ये सब्जी आप रोज बनाएंगे?
1: जी हाँ, करीब करीब रोज ही। कल से ही हम इसे बनवाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा, ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है।
0: तो ऐसा करते हैं कि इसे बड़े टाइप में काफी स्पेस देकर टाइप कर देती हूँ।
1: वंडरफुल वंडरफुल।

0: गाजर की सब्जी सूखी, मूली का रायता, आलू, पनीर। ओह वाल्टर, तुम कहाँ हो? कल से बसंत का मौसम शुरू हो रहा है। ये देखो, तुम्हारी मनपसंद सब्जी में उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। वाल्टर, कल ज़रूर आ जाना। वाल्टर, तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं। वाल्टर, कल ज़रूर आना, ज़रूर आना, ज़रूर आना।
1: मेम साहब, आपका खाना
0: रख दो यहाँ। हाँ, आज तो नई सब्जी लाए होगे।
1: जी हाँ, और हमारे यहाँ की सबसे मशहूर सब्जी भी है। ये देखिए, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: तुम ये सब्जी ले जाओ, वापस ले जाओ।
1: बट मैडम, ये तो हमारे यहाँ की खास डिश है, आप चक्कर तो देखिए।
0: नहीं, तुम नहीं जानते, मैं अभी इसे नहीं खा सकूंगी, नहीं खा सकूंगी।
1: ओके, जैसा आपका हुक्म।
0: वाल्टर, बसंत का पहला दिन तुम्हें मुबारक हो। लेकिन तुम कहाँ हो वाल्टर? तुमने वादा किया था कि तुम इस दिन मुझसे मिलने जरूर आओगे। काश तुम आज यहाँ होते तो हम दोनों साथ साथ तुम्हारी मनपसंद सब्जी खाते। वाल्टर, कौन है?
2: सारा।
0: वाल्टर, ओह वाल्टर, तुम सच ही वाल्टर हो ना? बेरा, बेरा।
2: यस मैडम।
0: उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी वापस लाओ।
2: ओके मैडम।
3: सारा।
0: वाल्टर, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं डाला कि तुम आ रहे हो?
3: वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में गया तो पता चला कि तुमने बहुत पहले ही वो जगह छोड़ दी है। बस तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
0: लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही खत डाल दिया था और उसमें नया पता भी लिख दिया था।
3: नहीं, ऐसा कोई खत मुझे तो नहीं मिला।
0: अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे?
3: असल में मैं अभी तुम्हारे वाले होटल में खाना खाने गया। वहाँ जब मैं मेनू देख रहा था तो आलू पनीर के बाद वाली सब्जी देखकर चौंक उठा। बस फौरन मैनेजर से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, उसने तुम्हारा पता दिया और मैं यहाँ।
0: हाँ, मुझे याद है कि उसके बाद तुम्हारी मनपसंद सब्जी का नाम था।
3: साथ ही मुझे ये भी मालूम था कि तुम्हारे टाइपराइटर का वह अक्षर कुछ आड़ा टाइप होता है।
0: लेकिन उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी में वह अक्षर कहाँ से आया?
3: लेकिन सारा डियर, तुमने जो सब्जी टाइप की है उसे जरा पढ़ो तो।
0: क्यों, क्या टाइप किया है? देखूं, उबले हुए अंडों के साथ प्रिय वाल्टर। असल में मैं उस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
4: मेनू कार्ड हवा महल में आज आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरकार थे मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और टूची रैना की आवाजों से। फिल्म का नाम है शॉर्ट इन द सिटी, संगीत सचिन जिगर का, बोल समीर के।

अब सुनिए रूप कुमार राठौर के आवाज में अग्निपथ फिल्म का गीत। अजय अतुल का संगीत है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

रंग दे बसंती। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज में। धुन बनाई है ए आर रहमान ने, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंग इज किंग, अब सुनिए इस फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार मयूर पुरी, संगीतकार प्रीतम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश डेली सिक्स फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार सातवीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में

टेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेटॉन 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन

0: समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
3: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।

0: लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सबसे पहले सुनिए येसुदास की आवाज में सुनैना फिल्म का गीत, संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आपने सुनैना फिल्म में यशोदास को सुना। अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में प्यासा सावन फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है संतोष आनंद ने।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगली पेशकश अनुरोध फिल्म से आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मुकद्दर का सिकंदर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की बात।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहाँ चले, घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उसका।

0: क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
2: देखते हो रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
3: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
2: क्या काम करते हो?
3: बेकार।
2: नौकरी चाहते हो?
3: मुझे नौकरी मिलेगी।
2: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
1: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की। इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, चलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: हाँ, वर्मा जी। वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए। और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं। और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: राम प्रसाद।
1: मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास, अरे चुनिंदा हो तुम, ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पे जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
2: ये अभी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।

सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आजी इस घर में हो क्या रहा है? तुम बैठो, मैं भी आता।
2: ये क्या गाने पूछी हो रही तुम घर में?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी ही खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी है और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा,
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: सन 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं पिताजी?

0: कहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाती।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुनिए फिल्म संगीत।

वो कौन थी। गीत लिखा था रजा मेहंदी अली खान ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: इज्जत इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर में। शब्द लिखे थे साहिर लुधियानवी में और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन

0: संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।